लीजिए जी, एक बार फिर से हाजिर है सताक्षी आपका साथ निभाने के लिए, आपकी नई सुबह की खूबसूरत जर्नी को स्टार्ट करवाने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपने दिन को खुशनुमा और बेहतरीन बनाने के लिए। क्योंकि आपका साथ जो है वो न सिर्फ मुझे एक्साइटेड करता है आपके साथ जुड़ने के लिए, बल्कि आपका साथ जो है वो मेरी जर्नी को, मेरे दिन की शुरुआत को भी बड़ा इंटरेस्टिंग और खास बना देता है। भाई यही तो होता है प्यार की, एक दूसरे के साथ जब आप होते हैं तो आपको अच्छा फील होता है और आने वाले कुछ घंटे जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ साथ मेरा और आपका भी है। आई रियली होप कि आप भी मेरे लिए ऐसा फील करते हो। वैसे अगर नहीं करते हैं तो भी इट हैपेंस छोड़कर कहीं मत जाइएगा कि बहुत कुछ खास और इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग आज एक बार फिर से आपके लिए सफर में है। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सताक्षी आपके साथ और लेकर आई हूं आपके लिए एक बार फिर से इट हैपेंस का सफर, जहां पर पूरे 2 घंटे हम और आप एंजॉय करेंगे कुछ खूबसूरत गानों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपन सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर। दोस्तों आपके साथ है सताक्षी, और इसके पहले कि हम सफर में आगे बढ़े, विश करते हैं उन्हें जिनके लिए आज का दिन है स्पेशल और खास। जी हाँ, जिनका आज हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और हमारी दुआ है कि आपका ये जो सफर है जिंदगी का, ये बहुत ही खुशनुमा और अपनों के साथ से भरा हुआ, ढेर सारे मौकों से भरा हुआ, जिंदगी की नई एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ रहे। आप लाइफ को यूं ही एंजॉय करते रहे। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की मोहब्बत, बहुत बहुत मुबारक। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, याद रखिए कि जिंदगी जो है वो सिर्फ सुखों का नाम नहीं है, सुख और दुख इस जिंदगी के एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए जितना साथ आप एक दूसरे का सुख में निभा रहे हैं, उतना ही एक दूसरे का जब टफ टाइम आएगा तो उसमें भी एक दूसरे के साथ रहिए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि उन्हें आज के दिन से कुछ उम्मीदें, कुछ होप्स, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए प्ले करेंगे अगला ट्रैक, स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ 3 2 1 7 0 1 AM पर. गुस्सा, गुस्सा जो है वो कहते हैं कि हर परेशानी की जड़ है, हर परेशानी की वजह है, रूट कॉज है. किसी भी परेशानी की शुरुआत, किसी भी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत, आपके रिश्तों में खटास आने की शुरुआत जो है वो इसी गुस्से के साथ होती है. गुस्से से किसी परेशानी का हल नहीं निकलता है, लेकिन परेशानियां नई नई ज़रूर खड़ी हो जाती हैं. और इसीलिए इस गुस्से पर काबू करना बहुत ज़रूरी है. जब भी दो लोगों के बीच में गुस्सा आ जाए तो उस वक्त कुछ भी मत कहिए. सबसे बेटर तरीका है चुप हो जाना. चुप हो जाइए और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर हो जाइए. उसके बाद जब मन शांत हो तब आकर एक दूसरे से बात कीजिए कि भाई ये बात सही नहीं थी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और उस पर बात कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए. लेकिन गुस्से में कई बार आप इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं कि फिर बात बिगड़ जाती है. कई बार देखेंगे आपके गुस्से में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना बिगाड़ने पर आ जाते हैं. लेकिन वही चीज़ें अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो आपको लगता है कि यार इतना बड़ा भी इशू नहीं था, इसे बात करके भी सुलझाया जा सकता है. इसलिए बात कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ. फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ. स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसारण.

1701 AM पर आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। ताक्षी आपके साथ है दोस्तों। और कई लोग ना आपके पास ऐसे होते हैं, आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे होते हैं जो उड़ना नहीं जानते, सिर्फ फड़फड़ाना जानते हैं और आपकी उड़ान को रोकना जानते हैं। या आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेंगे, आपके काम में 10 कमियां निकालेंगे, आपको हर बात पर क्रिटिसाइज करेंगे। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको लगता है कि यार मुझ में कमी है या मेरे प्लान्स में कमी है, मेरे गोल्स को अचीव करने में कहीं कोई कमी आ रही है। आपको सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है इनकी ओर से। और मजे की बात यह है कि आप ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते, आप इनके टैलेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इनके साथ रिश्ता रखना है, अगर रखना है तो कुछ बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को आप जवाब दे के, आप इनसे लड़ के, आप इनका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए रिश्ता निभाइए, बाउंड्री सेट कर दीजिए, उसके बाद उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप अपनी उड़ान को ऊंचा रखिए, नीचे देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जहां आपने नीचे देखा ये आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए बस आप अपने गोल, अपने अचीवमेंट, अपनी उड़ान पर ध्यान दीजिए और सुनते रहिए ठापन सताक्षी के साथ। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं अभी हमारे सफर में आगे।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर सताक्षी कहती है आपको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस मेरे साथ, और अभी हम हैं वहां पर जहां तीन बैक टू बैक हमारा साथ निभाते हैं। जी हां, बैक टू बैक गानों की ही बात हो रही है। तो बैक टू बैक गानों में यानी तीन गानों में आज पहला गाना कौन सा है हमारे गानों की हैट्रिक का, आइए सुनते हैं।

की हैट्रिक यानी तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का सफर आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ, और इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ेंगे सफर में आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी।

गानों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर, और एक और गाने के साथ बढ़ूंगी सफर में आगे। मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ जी हाँ रेडियो प्रस्थानी पर। इस गाने के उस पार होंगी फिर से आपसे ढेरों बातें।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

पिस्वानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जुबान एक ऐसी चीज है जो 100 घाव से भी ज्यादा घाव देती है दोस्तों। आप किसी को खंजर मार दें तो कई बार उतना वो बुरा नहीं लगता है, उतना दर्द नहीं होता है जितना आपके शब्दों से लोगों को हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को जितना हो सके चुप रहना चाहिए, इसीलिए साइलेंस की पावर पर बात करते हैं, क्योंकि जब आप साइलेंस रहते हैं आप चुप रहना सीख जाते हैं, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आप कम करना सीख जाते हैं। महाभारत की शुरुआत ही देख लीजिए, महाभारत की शुरुआत बेसिकली टंग की वजह से ही हुई थी, जबान की वजह से हुई थी। अंधे का पुत्र अंधा, अगर ये सेंटेंस शुरू ना हुआ होता तो शायद बात महाभारत में इतनी भी ना बिगड़ती, है ना। तो बहुत जरूरी है कि अपनी जुबान पर काबू रखा जाए और उसके लिए अननेसेसरी जो हम बोलते हैं, जबरदस्ती का जो हम बोलते हैं या अपनी राय देते हैं, उससे बचा जाए। और इसी बात पर एक और काम किया जाए कि अगला ट्रैक एंजॉय कर लिया जाए। आइए आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। की प्रेसनिंग टू रेडियो प्रेसवानी, आपके साथ सताक्षी है।

बीटी प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। जी हाँ, इट हैपेंस सुबह के ब्रेकफास्ट पर, सुबह की ताजा तरीन और खास और प्यार भरी बातों का ये सफर है दोस्तों। लाइफ में पहला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कुछ भी जो जिंदगी में पहली बार होता है, पहली दफा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि आप कभी भी वो इम्पोर्टेंस जो है वो ज़िंदगी में दोबारा वो चीज़ आपको मिल जाए फील नहीं कर पाते। लाइक पहली दफ़ा जब आप स्कूल जाते हैं आपको लगता है कि आप दुनिया जीतने जा रहे हैं, पहली बार जब आप जॉब करते हैं तो आपको लगता है कि यार आप किसी सीईओ से कम नहीं हैं, वो पहली साइकिल, वो पहली सैलरी से लिया गया कोई स्कूटर, छोटा सा स्कूटर, छोटी सी स्कूटी या फिर फोर व्हीलर जब आप पहली बार खरीदते हैं, एक अलग ही क्रेज होता है उसका। और पहला प्यार, कहते हैं ना कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता है, आप जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाएं बट नहीं भूलता। सो लाइफ में पहली चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही स्पेशल हैं। आपकी लाइफ में वो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते और आपको हमेशा याद रहेगी, हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए हमारे रेडियो प्रस्वानी के फेसबुक पेज पर और रेडियो प्रस्वानी की वेबसाइट पर। फिलहाल एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस सताक्षी के साथ।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडी ब्रिस्वानी वंसन वारे हम ते जी आप चे संदेश शलक दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत सोहना चवला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिस्वानी वंसन वारे हम साडा फेसबुक पेज है जी ब्रिस्वानी@ब्रिस्वानी.com। साडी ईमेल आई डी है जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा तुसी अपना पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर जरूर करते रहा करो, है ना। तां फटाफट जुड़ना शुरू कर दो फटाफट दे नाल। ते मैं बस सुने वापिस सुननी हाँ थोनू कला कि दिन छड़ के जाना एक गीत थोनू सुनानी हैगी है। मैं तुसी इन्हां गीतां नूं इंजॉय करो। मैं हुणे वापिस आई।

वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो बॉलीवुड दे विच ना एक अदाकारा अजिही हैगी है जिसनू कदे कोई भुल ही नहीं सकदा। बेशक वो अज साडे विचकार नहीं है पर हमेशा जदों भी स्क्रीन ते आउंदी है ना तो पुरानियां यादां ताज़ियां कर दिंदी है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर दे दौरान श्रीदेवी ने सदमा नगीना चांदनी इंग्लिश इंग्लिश मिस्टर इंडिया जा जुदाई चालबाज वर्गियां कई यादगार फिल्मां कीतियां जिन्हां तों उन्हां नूं वक्री पहचान मिली। तो मैं सोचा कि अज श्रीदेवी दियां कुछ फिल्मां बारे गल करिए पर उन्हां फिल्मां बारे नहीं जिन्हां दे करके वह फेमस हुई क्योंकि वह फिल्मां तो सब नूं पता ही है कि ने जुबान ते रहिंदियां ने ना जिवें मिस्टर इंडिया हो गई चालबाज हो गई इन्हां नूं कैसे भुल सकता है कोई। हाँ उन्हां फिल्मों बारे गल करदे हां जिन्हां नूं श्रीदेवी ने रिजैक्ट कर दिता सीगा। दस दो तुसीं हैरान रह जाओगे जे तुसीं उन्हां फिल्मों बारे जाणोगे तां। करदी हां तुहानूं हैरान पर पहला सुनो एक गीत।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 1091 ते चार छे संदेश अलग दे नाल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम केड़ा आंदा हैगा? केड़ी लिस्ट? ओही लिस्ट के श्रीदेवी ने केड़ियां केड़ियां फिल्मां रिजेक्ट कीतियां ने, तां ओह लिस्ट दस रही हां मैं। तां इस रिपोर्ट्स दे विच, इस लिस्ट विच सब तो पहला नाम बाहुबली आंदा है। रिपोर्ट्स मेरे मुंह चों तां निकलिया क्योंकि रिपोर्ट्स दे आधार ते तां सारी गल करनी हैगी। तां देखो, मीडिया रिपोर्ट्स दी जे मन्नीए, बहुत सारे लोग वैसे मीडिया दीआं गल्लां नूं सच नहीं मानदे, पर बहुत सारियां उदां ही नहीं करदे हुंदे, सच हुंदियां ने। तां देखो, मीडिया रिपोर्ट्स दी मन्नीए तां श्रीदेवी नूं फिल्म बाहुबली विच शिवगामिनी दा रोल ऑफर होया सी। शिवगामिनी दा रोल तो सब नूं याद है ना, बाहुबली दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, बाहुबली दी मां दा रोल। पर उन्होंने इस नूं मना कर दिता सी, ते किरदार राम्या कृष्णन दी चोली विच पिया सीगा, है ना। बहुत ही स्ट्रोंग ते बहुत ही सोहना, ते हैरानी हुंदी है ना कि श्रीदेवी ने किवें मना करता सी इस रोल दे लई।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Munda sadhuwa da

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाणी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हो। अमिताभ बच्चन के नाल श्रीदेवी ने बहुत सारिया फिल्मा की दिया। देखो सवाल थोड़े लिए फिर मैं यही छड़ दिनी हाँ कि तुम दसो कि अमिताभ बच्चन के नाल कि फिल्मा है जिड़िया और श्रीदेवी ने कितिया या कि सब तो ज्यादा हिट रही है, दसो दसो तुम जवाब दो। रेडियो बरसौनी 101.1 साइड फेसबुक पेज है bersauni@bersauni.com साड़ी ईमेल आई टी है, कोई भी जरिया अपना के जवाब दो। तो मैं हूँ इस नाल जुड़ी हुई अगली फिल्म का नाम दस दिनी हाँ जी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो वह फिल्म सी मुहब्बतें। जी हाँ मेकर्स इस मूवी में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट श्रीदेवी नू लेना चाहते सी पर उन्होंने उसनू करन तो मना कर दिता सी। इस फिल्म नू भी करती सी कोरीना, बाद विच किरदार ही फिल्म तो हटा दिता गया, किसी ने रोल किया ही नहीं।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाणी 101 एम ते जी आर चे संदेश और एक दिनाल से बने हुए। एक फिल्म सी जिसने काजोल नू बहुत वड्डा स्टार बना दिता। शाहरुख खान तो पहला ही स्टार सीगे ते इन्हां दी जोड़ी नू इस फिल्म तो बाद कुछ ज्यादा ही पहचान मिली सी। फिल्म का नाम है जी, उस विच शिल्पा शेट भी सी। आ गई ना यार, बिल्कुल सही पहचान है। फिल्म का नाम है जी बाजीगर। इस फिल्म नू भी श्रीदेवी ने करती से कोरी ना। इस फिल्म विच श्रीदेवी नू डबल रोल ऑफर होया सी, पर एक्ट्रेस ने मना कर दिता। फिर जदों उन्होंने मना कर दिता ना, तो बाद विच मेकर्स ने फिल्म की कहानी विच बदलाव ही लिया। देखो पर एक चीज तुसी समझो कि श्रीदेवी दी किड्डी तकड़ी इंपोर्टेंस थी ना, कि जिहड़ी फिल्म नू कईआं नू मना करदी सी तां उस दे विचों किरदार ही हटा दिता जांदा सी। बाजीगर दे विचों, मुहब्बते दे विचों। अगे भी मैं दसदी आं इस बारे, सबर रखो।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101 ते चार छे संदेश अलग दिनाल तुसी बने होए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिसनू रिजैक्ट किया श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया है। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं हैगी अमिताभ बच्चन दी इस फिल्म दे लई मेकर्स दी। यह रोल पहला श्रीदेवी दे हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजैक्ट कर दिता। रिजैक्ट होया तां फिर हेमा मालिनी कोल गया ते नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल दे विच बिल्कुल परफेक्ट लगी।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लब्भण लई वेबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

हां जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आप चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, तो उस फिल्म का नाम हैगा है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस विच पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओह श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहला सोचो सोचो सोचो कि पूजा किहड़ा किरदार सी। ओह श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हाँ, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani pe.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मानी 101 एफएम ते जीआर चे संदेश अलग दिना से बने हुए। एक और शाहरुख खान दी मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, ते वो मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल दी फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण दा किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते हैं कि यह रोल पहला श्रीदेवी को ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इसको मना करता सी, तो फिर रोल गया जूही चावला के हिस्से। नो डाउट जूही चावला ने इसको बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया है, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी थे। हुण इमेजिन करते हैं जो श्रीदेवी होंगी तो किस तरह के लगनी सी ये फिल्म।
1: I'm gonna smash your boy. Tomorrow night, I'm gonna smash your

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
6: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं. निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं.

हाँ जी, वेला तो हो चुका है, थोड़े तो इजाजत लैन का, थोड़ा टाटा बाय बाय कहण का। पर देखो हुण लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फिल्म थानू दसनी हैगी है, जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की सी। ते उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ, इस मूवी दे लई मेकर्स दी पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जदों मना करता सी ना, तो बाद दे विच इस नू इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट कीता गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चली गई। ते उन्हां दी जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित होई, क्योंकि इस तो पहला तक तां अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी उह श्रीदेवी दी काफी ज्यादा पसंद की जाती सी। ते देखो ये सारिया फिल्मा है ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजेक्ट करतियां। हुण तुसी इंज करो कि दसो कि केड़ी फिल्म तुसी चाहुंदे हो, या थोनू लगता है कि काश ये फिल्म दे विच श्रीदेवी नू कास्ट किया जाता तो ये फिल्म बहुत ज्यादा सोहनी होनी सी, है ना? दसो दसो फटाफट दे नाल। रेडियो ब्रिसोनी 107 साडा फेसबुक पेज है, जिते ब्रिसोनी ब्रिसोनी .com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा होए अपनाओ, साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहा करो, है ना? तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। बाकी मैं तां इही कहणा है जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, कल मिलते हैं, करदे मुलाकात, सत श्री अकाल।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटाशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415952।

0: 660-0415-952-660.
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज्जी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मजे आपको अभी से फील हो रहे हैं, फन आपको अभी से फील हो रहा है, वो सुकून आपको अभी से फील हो रहा है या नहीं। क्योंकि आपको पता ही है आज है फ्राइडे और फ्राइडे इज ऑफिशियली आर फेवरेट डे। पूरे हफ्ते में जो सबसे अच्छा दिन होता है ना, सबसे खास दिन होता है, वो फ्राइडे होता है। क्योंकि इस दिन हम काम तो करते ही है, लेकिन हमारे दिमाग में वो सुकून भी होता है। वो स्ट्रेस नहीं होता कि ओके कल फिर से वापस आना है, कल फिर से काम करना है। आज के दिन हम काम करते हैं, लेकिन मजे से काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमें दो दिन जो है वो मजे से सुकून के मिलने वाले हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई बॉस की चिक चिक नहीं, कोई मैनेजर की चिक चिक नहीं, और कोई वो कॉल का बीप बीप बीप भी नहीं। जी हाँ, सो कुछ भी नहीं होगा ऐसा। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलने वाला है, बहुत सारे मजे मिलने वाले हैं, जैसे मैंने कहा। सो हैप्पी फ्राइडे एवरीवन। और व्हाट आर यू डूइंग। जी हाँ, आइए आज आइए हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्दी रिचुअल के साथ, और वो है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। ये हमें अच्छे से किसी भी चीज को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, हमें सुकून देता है, स्ट्रेस भी बनाता है, और बेसिकली हमें फोकस्ड भी बनाता है। सो लंबी गहरी सांसें लेते हैं क्या बात है, अच्छी बात है। और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और जल्दी से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया गाने के साथ, और उसका नाम है हम तो दीवाने दीवाने, हम तेरे हैं दीवाने। जी हाँ, मैं भी तो आप लोगों की फैन हूँ, राइट। सो आइए सुनते हैं इस गाने को, यासिर देसाई के इस गाने के साथ करते हैं शुरुआत, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, क्योंकि वीकेंड तो आ गया है, फन भी प्लान हो रहा है, मतलब सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे दिमाग में पहले ही उनकी प्लानिंग शुरू हो गई है। लेकिन मौसम साथ देने वाला है या नहीं, वो तो अभी आपने देखा ही नहीं। चलिए, आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना आपकी आरजे निविया। आई एम गोना टेल यू कैसा रहने वाला है मौसम अगले दो दिन, और आज क्या स्थिति बनेगी। और जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैक्सिमम टेम्परेचर से शुरुआत करते हैं। 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, वहीं अभी की बात की जाए तो 22.4 डिग्री सेल्सियस के करीब आप के लिए अभी टेम्परेचर है, फील आप कर पा रहे हैं 22 डिग्री सेल्सियस के करीब। वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे। चलिए, ये तो ही टेम्परेचर की बात है। अब जरा बात करते हैं एयर क्वालिटी की, जो की है एकदम एक्सलेंट, और चांसेस ऑफ रेन यानी कि बारिश की जो चांसेस है वो 70% है। और जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, वो भी कहीं कहीं पर हो रही है और कहीं कहीं पर तो नहीं हो रही है बिल्कुल। आप मुझे बताइए आपके इलाकों में हुई है या नहीं हुई है। रात को मुझे क्लाउडी सिचुएशन तो दिख रही है, बट बीच में 10 से 12 बजे तक बीच में थोड़ी बारिश दिख रही है। उसके अलावा मैं स्थिति जो है वो देख पा रही हूं कि अच्छी है, मतलब बारिश होने के चांसेस एटलीस्ट रात में थोड़ी देर के लिए ही है, उसके बाद मुझे नहीं दिख रहे। बट अगेन सैटरडे को फिर से पॉसिबली आपको बारिश देखने को मिलेगी विद 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि पॉसिबल शार यू कैन सी। बट संडे की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली बारिश होने वाली है विद 90% चांसेस एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो कल का जो है वो अभी कच्चा पक्का है, यानी कि कच्चा पक्का पक्का कच्चा, मतलब हो सकती है नहीं भी हो सकती है, कुछ इलाकों में हो सकती है और कुछ इलाकों में नहीं हो सकती है। सो वैसे वाली सिचुएशन जो है 70% चांसेस, बट या अगेन 1 to 5 mm बारिश जो है जिन इलाकों में होगी वो देखने को मिल सकती है। संडे को मैंने आपको बताई दिया कि 90% जो है वो चांसेस एंड 1 to 5 mm बारिश आपको देखने को मिल सकती है, और डेफिनेटली मुझे बारिश दिख रही है। सो संडे भीगा भीगा है, लेकिन सैटरडे को जो है वो विंडो खुल सकती है आपके बाहर जाने की, और आप बाहर जाकर मस्ती कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। बट अगेन इट इज नॉट गारंटेड, क्योंकि मौसम है भाई, हम किसी और की गारंटी दे सकते हैं लेकिन मौसम की नहीं दे सकते, क्योंकि मौसम तो अपनी ही अंगड़ाई लेकर आगे की ओर बढ़ता है, मतलब हमारी सुनने लगा तो मौसम मौसम थोड़ी रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत है तो खूबसूरत गाना तो बनता है।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, उसी के साथ फ्राइडे की बढ़िया सी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अगर आपकी फरमाइशें आ जाए तो मजा आ जाए, वाइब बन जाए और चार चांद क्या सब कुछ खूबसूरत लग जाए. जी हाँ, सो आपको पता ही है, मेरे को भी पता है, लेकिन इनकेस जिसको नहीं पता है उनको हम बता दें कि आप हमारे इस प्रोग्राम में कर सकते हैं फरमाइशें. अपने फेवरेट गाने, अपनी चॉइस के गाने आप फरमाइश कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, हमें भेज सकते हो और हम आपके लिए उन्हें प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जी हाँ, पूरी तरह से तैयार हैं, आधे नहीं, पूरी तरह से तैयार हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फोन उठाइए. आपको एक नंबर डायल करना है, नंबर है +9182 888-717-701. आई रिपीट, +9182 888-717-701. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, यही वाला भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप. और मुझे है इंतजार जब तक आप भेज रहे हैं हमें वो बढ़िया सा गाना जो आपको बहुत ही ज्यादा अजीज है. हमारी तरफ से भी एक बहुत ही ढिंचक सा गाना, क्योंकि इट्स फ्राइडे और आज नहीं ये गाना प्ले किया जाएगा तो कब किया जाएगा.

पे कितना चैट जीपीटी यूज करते हैं वो तो हम ही जानते हैं, राइट? ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ फैन ऑफ चैट जीपीटी दैट मच, आई प्रेफर अदर एआई टूल्स, बट आप लोग और लिटरली इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी एआई एजेंट से सबसे ज्यादा बात करते हैं, एआई टूल से सबसे ज्यादा बात करते हैं, दैट इज चैट जीपीटी। अब मैं आपको कहूं कि ओपन एआई जो कि पेरेंट कंपनी है चैट जीपीटी की, वो अपना एक फोन मार्केट में उतारने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप? आप बोलोगे ओह अगर वो फोन उतारने वाले हैं तो एप्पल और एंड्रॉयड क्या करेंगे? वेल एप्पल और एंड्रॉयड सच में क्या करेंगे, क्योंकि अगर ओपन एआई फोन उतार रहा है जो कि ऑलरेडी एआई कंपनी है, तो वो कितना स्मार्ट होने वाला है, राइट? मतलब एआई कैन बी रियली रियली स्मार्ट, बट कैन इट बी सिक्योरर देन एप्पल और एंड्रॉयड? वेल, ये तो वक्त ही बताएगा, और वक्त क्या बताएगा, हम भी आपको बताएंगे इसके बारे में। थोड़े अंदेशे तो हम भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं कि माजरा क्या है और कैसे ये काम करने वाला है। कहानी थोड़ी लंबी है, सो ऑफ कोर्स हम थोड़ी लंबे तरीके से इसको बताने वाले हैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। सो ओपन एआई एंड चैट जीपीटी जो है वो एक स्मार्टफोन लेकर आने वाले हैं, और वो स्मार्टफोन एंड्रॉयड और एप्पल को पछाड़ने के लिए वो लेकर आ रहे हैं, और वो बहुत सारे फोन सेल करना चाहते हैं जो वो उतारने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि 2027 में, फरवरी 2027 तक ये फोन मार्केट में आ सकता है। जी हाँ, 2026 चल रहा है, मतलब एक साल भी नहीं है जब ये फोन आ जाएगा मार्केट में। नाउ व्हाट इट ऑफर्स एग्जैक्टली? जी हाँ, अब ऑफकोर्स ओपन एआई और चैट जीपीटी ने इस फोन को बनाया है, तो सबसे पहले ये स्मार्ट होगा। इसमें आपको किसी भी ऐप की जरूरत नहीं होगी, मतलब आपको खाना ऑर्डर करना है तो वो आपका फोन करके देगा, अगर आपको कैब बुलानी है तो वो आपका फोन आपको करके देगा विदाउट द ऐप। मतलब आपको कैब करने के लिए उबर की जरूरत नहीं है, आपको खाना ऑर्डर करने के लिए उस ऐप की जरूरत नहीं है जिस ऐप को आप यूज करते हो, या आपको किसी भी और ऐप की जरूरत नहीं है। इसमें जो है वो आपके एजेंट्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स, चैट एजेंट्स, एआई एजेंट्स जो आपको समझते हैं, कुछ ज्यादा ही समझते हैं। जी हाँ, मतलब आप लोग सोच लीजिए कि वो आपको कितना अच्छे से समझते हैं, कि अगर आप 10 मिनट के लिए अपनी मीटिंग के लिए लेट हो गए हैं तो वो चैट जीपीटी का बनाया हुआ फोन खुद ही जिससे आप मिलने वाले हैं उसको फोन करेगा, उसको मैसेज करेगा और उसको कहेगा कि आप 10 मिनट के लिए लेट हो जाओगे, वो आपके लिए कैब बुक करेगा, वो आपके लिए रूट बदलेगा जो सबसे ज्यादा जल्दी आपको पहुंचाएगा, वो आपके लिए रेस्टोरेंट का एड्रेस भी चेंज करेगा अगर जरूरत है, और आपके लिए टेबल भी बुक करेगा। सब कुछ आपका फोन आपसे बिना पूछे करेगा। इमेजिन, आई मीन हमने सोचा था कि हम ऐसे वाले टाइम में जाने वाले हैं, लेकिन इतना जल्दी जाने वाले हैं मुझे नहीं पता था, क्योंकि चैट जीपीटी और ओपन एआई ने कह दिया है कि हम इसे जल्दी ही करने वाले हैं। नाउ अब आते हैं डिजाइन, और क्या चीज इसको और भी ज्यादा खास बनाती है, या क्या चीज जो है वो इसके डिजाइन से रिलेटेड है। वेल, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, पर क्योंकि मैंने कहा था थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये किस्सा, तो यहां पर एक गाना आपको सुनाते हैं मजेदार सा, और फिर करते हैं उसके बारे में बात।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਕਾਰਟਨ ਉੱਤੇ 10 ਸੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖਰਚੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫੋਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਫੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ 10 ਸੈਂਟ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
3: ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬੈਸਟ ਜੂਲਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਨੂੰ, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, तो बात हो रही है चैट जीपीटी और ओपन एआई के फोन की, जो अगले साल वो लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन ये फोन अभी से सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पछाड़ रहा है। मतलब यू डोंट नीड ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट दिस फोन। इस फोन में सिर्फ और सिर्फ एआई एजेंट्स होंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। दे नो what you want and what you need, और उसी हिसाब से वो आपके लिए सारी की सारी चीजें खुद ही कर देंगे। मतलब your smartphone can get that is smarter। जी हाँ, now let's talk about the things that this phone has, and ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें MediaTek Dimensity 9600 चिप है और इसी के साथ ये फोन जो है वो बाहर आने वाला है। let's talk about the design। जी हाँ, design की अगर बात की जाए तो Jony Ive, जो कि Apple के starting के जो फोन थे, जी हाँ, जब एप्पल कंपनी शुरू हुई तो जो स्टार्टिंग में जो फोन्स आए थे उनको डिजाइन कर चुके हैं, मतलब एप्पल के साथ ये काम कर चुके हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, वही इसके फोन्स को भी डिजाइन कर रहे हैं। ओपन एआई के फोन्स को भी वही डिजाइन कर रहे हैं और वो ही इसकी डिजाइनिंग टीम में इन्वॉल्व है। नाउ आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, इसमें सिर्फ चैट एजेंट्स होंगे और वही एजेंट्स जो आपको अच्छे से जानते होंगे, आपके लिए सारे के सारे काम खुद ही कर देंगे। मतलब आप लेट हो रहे हो तो वो मैसेज कर देंगे सामने वाले को कि द पर्सन इज गोना बी लेट, और ऐसे ऐसे करके बाकी की सारी चीजें, मतलब आपके लिए कैब ऑर्डर करना, आपके लिए खाना ऑर्डर करना, दे विल डू everything for you। अब आप लोग बोलोगे कि हमको क्या खाना है, ये चैट बोट कैसे हमको बताएगा। वेल, यही तो एआई है। वो आपको इतने अच्छे से जान जाते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। नाउ आप मुझे बताइए, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि आपका स्मार्टफोन जो है वो और भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, या आपको डर लग रहा है? वेल, मुझे तो डर लग रहा है। मैं इस फोन को लेना चाहूंगी? नो, बिकॉज नो मैटर व्हाट, कितनी भी मुझे अच्छी चीजें मिल रही हो, कितना भी कंफर्ट मेरा बढ़ रहा हो, लेकिन कोई भी चीज मुझे इतने अच्छे से जाने ये मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। यू टेल मी अबाउट यू, क्या आप इस फोन में इंटरेस्टेड रहोगे? क्या आप बाकी फोन्स जो अभी तक आपको जानते थे पर उतने अच्छे से नहीं जानते थे, मतलब आपके पास फिर भी रिमोट कंट्रोल था, क्या क्या आप उन्हीं फोन्स पर रहोगे या चैट जीपीटी का ये फोन या ओपन एआई का फोन आपको अट्रैक्ट कर सकता है? लेट मी नो। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं फ्राइडे की उस चीज के बारे में जो फ्राइडे को ऑलमोस्ट हमेशा होती है। वेल ऑफकोर्स मूवीज रिलीज होने की बात मैं कर रही हूँ। अब फ्राइडे आ गया है तो नई मूवीज भी आ गई हैं, और नई मूवीज आ गई हैं तो आप क्या क्या देख सकते हो वीकेंड पे, वो तो हमें बताना होगा, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं उन मूवीज के बारे में जो इस हफ्ते आ गई है आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, और उसमें है पति पत्नी और वो पार्ट वन या पार्ट टू तो आपने पहले ही देखा था, लेकिन पति पत्नी और वो दो जो है वो इस बार आप देखोगे। और इसमें आपको मिलेंगे आयुष्मान खुराना जो कि पति हैं, ऑफ कोर्स सारा अली खान जो कि एक पत्नी है, वामिका गाबी जो दूसरी पत्नी है, और रकुल प्रीत सिंह जो तीसरी पत्नी है। या फिर इसमें से पत्नी कौन है, वी डोंट नो इट येट, बट आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। एंड अगेन इट कैन बी अ फैमिली मूवी क्योंकि ये थोड़ी फन मूवी है, कॉमेडी एंड रोमांटिक। सो अगेन आप जो है इसे देख सकते हो, बट या मतलब 16 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं इसे, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप कैसे और किसके साथ इसे देखने जाने वाले हो। और इसी के साथ ये तो हुई एक मूवी की बात, दूसरी मूवी जो लगी हुई है वो है आखिरी सवाल। जी हाँ, संजय दत्त के अगर आप फैन हैं तो ये मूवी आपको पसंद आ सकती है। इट्स अ ड्रामा, लाइक फुल ऑन ड्रामा मूवी, और ये है हिंदी और तेलुगु में आपको नजर आने वाली है। इसमें आपको संजय दत्त मिलेंगे, नामश्री चक्रवर्ती मिलेंगे, नीतू चंद्रा मिलेंगी, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी लगी हुई है थिएटर्स में इस बार। जी हाँ, इसी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज, जी हाँ ऐसा भी कुछ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर, बट इट्स आर रेटेड एंड ऑफ कोर्स इट्स ए रेटेड, इट्स अडल्ट जो है वो शो और मूवी या वट एवर इट इज, बट या ये भी लगा हुआ है। बट या इसके लिए मैं आपको अभी इतना नहीं बोलूंगी क्योंकि जो चीज मैंने खुद नहीं देखी है मैं उसके लिए आपको इतना प्रोत्साहित नहीं कर सकती हूँ, बट ये कॉमेडी और हॉरर है इतना मैं आपको बता सकती हूँ। जी हाँ, सो इसी के साथ यहाँ पर ये तो है जो इस हफ्ते आपके लिए आया है, लेकिन जो पिछले हफ्ते आपके लिए आया था उसकी बात कर लेते हैं। दादी की शादी, नीतू सिंह और कपिल शर्मा आपको इसमें नजर आने वाले हैं। कपिल शर्मा खुद की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और वहां पे पता चलता है कि कपिल शर्मा की दादी यानी कि नीतू सिंह वो शादी करना चाहती हैं, और फिर सभी की सभी चीजें जो हैं वो इधर से उधर, उधर से इधर हो जाती हैं। माजरा क्या है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस मूवी को देखोगे। इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी एंड इट्स अ ड्रामा मूवी। लाइक ड्रामा है, कॉमेडी है, फैमिली है, आपको बताइए। ये कोई नहीं छोड़ना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज बॉलीवुड आजकल ना बहुत ज्यादा ऐसी मूवीज नहीं बनाता। सो यू कैन गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसके अलावा बहुत सारा माल है जो आप देख सकते हो, एंड व्हेन आई से माल ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवीज, बट उससे पहले हम आपको बताएं, उससे पहले आपके लिए एक और जबरदस्त सा गाना।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों यहां पर अब जरा बात कर लेते हैं फिर से मूवीज के बारे में, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कौन कौन सी मूवीज आप जाकर थिएटर्स में देख सकते हैं इस वीकेंड, क्योंकि वीकेंड है भाई, हमें मूवीज तो चाहिए होती है। कुछ आप घर पे देख लेते हो, OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती है, लेकिन कुछ को देखने के लिए आपको बाहर जाना होता है और थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर मूवी देखने का मजा अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे पति पत्नी और वो दो रिलीज हो चुकी है इस हफ्ते, और आखिरी सवाल भी रिलीज हो चुकी है, और दादी की शादी पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी नीतू सिंह, एंड इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स अ ड्रामा मूवी, इट्स अ रोमांटिक मूवी बट फनी मूवी। जैसे के साथ अब जरा बात करते हैं एक हिस्टोरिक मूवी के बारे में, विच इज राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी ये मूवी। इसमें आपको हिस्ट्री पता चलेगी और वो सब कुछ गूजबम्स वाली सिचुएशन आपके सामने आएंगी जो उस वक्त हुई थी। जी हाँ, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और विद्या बालन, भाग्यश्री, फरदीन खान, कौन नहीं है इस मूवी में, सबके सब है। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि सलमान खान का गेस्ट रोल भी है इसमें। ऑल्दो मुझे थोड़ी फीकी इसलिए लगी क्योंकि रितेश देशमुख के अलावा किसी और ने प्ले किया होता, लाइक रणवीर सिंह या विकी कौशल, छत्रपति शिवाजी महाराज का मेन कैरेक्टर, तो मुझे ज्यादा अफेक्टिव लगता। बट या इट्स अप टू यू, यू लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगेन भूत बंगला कैन बी योर ऑप्शन, जो कि 2 हफ्तों से लगी हुई है थिएटर्स में, और इससे पहले ये उतर जाए जाकर देख लीजिए। इट्स अ हॉरर कॉमेडी, अगेन यू कैन वॉच इट, आपको मजा आएगा, आपको हंसी आएगी और आपको डर भी लगने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ ये सारी मूवीज जो है वो लगी हुई है थिएटर्स में। अब जरा बात करते हैं हॉलीवुड मूवीज के बारे में, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में भी बहुत कुछ लगा हुआ है। सबसे पहले मॉर्टल कॉम्बैट, जिसके काफी अच्छे रिव्यूज हैं। सेकंड जो है 2 जो है वो आ गई है, आप देख सकते हैं इसे। और अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूं, इट्स अ एक्शन एडवेंचर एंड फैंटेसी मूवी एंड यू आर गना लव इट। जी हाँ, इसका एक पार्ट बहुत पहले ही रिलीज हो चुका है, दूसरा पार्ट है ये। और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है देन गो फॉर इट, बिकॉज आपको अच्छा लगने वाला है ये। जी हाँ, इसी के साथ कृष्णावतारम आपको नहीं छोड़नी चाहिए, इट्स अ बॉलीवुड मूवी एंड ऑफ कोर्स आई वाज गोना टॉक अबाउट हॉलीवुड मूवीज, लेकिन कृष्णावतारम आप देख सकते हैं। और ये है लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण की कहानी, उनकी सेकंड वाइफ यानी कि अष्ट महारानियों में से दूसरी महारानी सत्यभामा के नजरिए से। सो जरूर देखिए, अगेन कृष्ण भगवान की लीलाओं को कौन छोड़ना चाहेगा, और वो भी सत्यभामा के पर्सपेक्टिव से, जो कि आज दिन तक कभी टीवी या फिल्म में नहीं दिखाया गया था। यू कैन गो फॉर इट, आपको अच्छा लगेगा। जी इसी के साथ यहाँ पर डेविल वेयर्स प्राडा 2 आप देख सकते हैं, और इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, ऑलमोस्ट 500 करोड़ के करीब ये मूवी पहुंच चुकी है और जल्द ही वो मार्क भी ये क्रॉस करने वाली है, 100 करोड़ में बनी है और 500 करोड़ कमाने वाली है ऑलमोस्ट। जी हाँ, इसी के साथ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, विच इज लीक ऑन इन द मम्मी, इट्स अ हॉरर मूवी, इट्स अ क्रीपी मूवी, बट इफ यू आर इन टू दैट जॉनर यू आर गोना लव इट, बिकॉज ये आपको डराएगी भी, सताएगी भी, और आपको ऐसा फील करवा देगी कि ओके हम ये क्यों देख रहे हैं, लेट्स जस्ट गो, लेट्स जस्ट लीव द थिएटर। जी हाँ, ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग 3 बार आई थी, बट स्टिल मैंने इस पूरी मूवी को कंप्लीट किया। एंड आई एम गोना से कि इट्स बीन अ वाइल हमें कोई ऐसी मूवी मिली है, एक ऐसी हॉरर स्टोरी मिली है जो कि सच में आपको पूरे तरीके से डरा रही है। जी हाँ, सो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं अपने नजदीकी सिनेमा घरों में, आपकी चॉइस है क्या चूज करोगे, और फिर हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन खतरनाक है और मजेदार, और इसका नाम है पान की दुकान, और फिर करते हैं और भी बहुत सारी बात।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं एक बहुत ही खास अभिनेत्री को कर लेते हैं जन्मदिन की मुबारक दे लेते हैं। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सोचिए सोचिए सोचिए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वेल ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ हमारी धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित जी की। आज है हमारी धक धक गर्ल माधुरी का जन्मदिन। और सबसे पहले तो हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम यही कहेंगे कि ये साल भी आपके लिए बहुत ही खास रहे। आप जो काम कर रही हैं सिल्वर स्क्रीन के लिए वो करती रहें, ओटीटी पे भी जो आप कर रही हैं वो करती रहें, अपने फैंस को अपनी झलक दिखाती रहें, यही हम चाहते हैं, यही आपके फैंस चाहते हैं। लेकिन आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और अच्छे से हैप्पी रहें इस साल, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, ये भी आपके फैंस चाहते हैं। सो अगेन, माधुरी दीक्षित की स्माइल जब आपको मिलती है ना देखने को, तो आपको ऐसा लगता है कि ओह क्या बात है, कितनी खूबसूरत स्माइल है, राइट? सो अगेन, अब माधुरी दीक्षित जो है उनका जन्मदिन है तो उनका एक गाना तो प्ले करना पड़ेगा। और आज है फ्राइडे तो मैंने सोचा कि थोड़ा चटपटा सा गाना अगर मैं प्ले करूं तो ज्यादा बनता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चोली के पीछे क्या है। जी हाँ, चोली के पीछे क्या है। वेल, ये गाना आई डोंट नो इसे सेंसर बोर्ड ने कैसे वो कर दिया था, बट इट्स अ फनी सॉन्ग एंड इट्स अ चटपटा सॉन्ग, सो वी आर गोना प्ले दैट टुडे एंड माय लिसनर्स लव इट एक्चुअली। सो अगेन, हम ये प्ले करेंगे और यही कहेंगे कि माधुरी दीक्षित की स्माइल की तरह ये साल जो है वो खूबसूरती से हम सब के लिए जो है वो। और इसी के साथ ये गाना आप सबके लिए

0: जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Priya, next month mama का birthday है। सोच रही हूँ उनको foreign exchange के through न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है, और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है, और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: Hi, this is Amitabh Bachchan,
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Salman Khan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार, और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अब बिना देर किए हुए चलते हैं जरा खबरों की दुनिया की तरफ। आपको पता ही है, हमें भी पता है कि सीरियस मामलों का डिस्कशन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है, बट चल रहा है वॉर फ्रंट पे भी बहुत कुछ। डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं चाइना और उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही है, इधर बातें हो रही है, उधर बातें हो रही है, सो बेसिकली बहुत कुछ हो रहा है एंड वी आर गना टॉक अबाउट इट। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से, यानी कि इंडियन न्यूज से। और पेट्रोल डीजल महंगा होने पर कांग्रेस ने कहा, चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मोदी सरकार के फैसले की सख्त आलोचना की है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपया महंगा कर दिया गया, वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपये बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा

सालों तक जब अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें कम थी या गिर रही थी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार ये मांग करती रही कि उसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और गैस, पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में कमी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को लूटा गया। अब जबकि प्रधानमंत्री ने करीबी दोस्तों अमेरिका और इसराइल द्वारा पश्चिम एशिया में छोड़े गए युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें बढ़ रही हैं और विधानसभा चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, मोदी सरकार ने पहले कमर्शियल एलपीजी की कीमतें बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने कहा कि इससे महंगाई और बढ़ना तय है, जो अब इस वित्त वर्ष में करीब 6% तक पहुंचने का अनुमान है और विकास दर के अनुमान भी काफी कम हो जाएंगे। लेकिन ये तो हुई भारत की बात, लेकिन जो बात है, मतलब जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो एनर्जी क्राइसिस पूरा का पूरा विश्व फेस कर रहा है, उससे कैसे निपटा जाए, नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल द अदर कंट्रीज, वहां पर भी ऐसी सिचुएशन है। पेट्रोल महंगा मिलना तो एक बात है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जहां पर लिटरली पेट्रोल है ही नहीं। इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, इफ वी टॉक अबाउट श्रीलंका, इफ वी टॉक अबाउट यू नो फिलीपींस, यहां पर पेट्रोल की इतनी कीमत कमी आ गई है कि उनके पास पेट्रोल है ही नहीं। सो पेट्रोल महंगा होकर मिलना वो फिर भी एक अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और खबरों में अब जरा बात करते हैं ऑफकोर्स ट्रंप की। शी जिनपिंग के ढलते अमेरिका वाले बयान पर ट्रंप ने क्या कहा? जी हाँ, ओहो, सो शी जिनपिंग ने कह दिया है कि अमेरिका ढल रहा है। माजरा क्या है, ये जरा जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीन के दौरे पर है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक बयान को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट किया है। दरअसल शी जिनपिंग हैं कि पश्चिमी देश ढलान पर हैं, हालांकि चीनी मीडिया इसे अमेरिका के संदर्भ में बताता रहा है। शुक्रवार को ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जब अमेरिका को डिक्लाइनिंग नेशन यानी कि ढलता हुआ देश बताया था, तब उनका इशारा मौजूदा प्रशासन नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौर की तरफ था। इस पोस्ट को व्हाइट हाउस ने भी रिपोस्ट किया है। जी हां, इस लंबे पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि पूर्ववर्ती बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने खुली सीमाओं, ऊंचे टैक्स, अपराध और व्यापार समझौतों को लेकर पिछली सरकार की आलोचना की। ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन के 16 महीने की अमेरिका ने तेज आर्थिक और सैन्य बढ़त हासिल की है। उन्होंने शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त, रोजगार के आंकड़ों और विदेशी निवेश का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका फिर से आर्थिक ताकत बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर से 18 ट्रिलियन डॉलर के निवेश अमेरिका में आ रहे हैं और देश का रोजगार बाजार इतिहास में सबसे मजबूत है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान और वेनेजुएला से जुड़े अमेरिकी संबंधों और सैन्य अभियानों का भी जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने भी कम समय में उनकी सरकार की उपलब्धियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, 2 साल पहले अमेरिका ढला पर था, इस बात पर मैं शी जिनपिंग से पूरा सहमत हूं, लेकिन अब अमेरिका दुनिया का सबसे चर्चित और मजबूत देश है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। वेल, शी जिनपिंग ने यह इशारा किसकी तरफ कहा है, वी ऑल नो बेटर, राइट? मतलब ट्रंप अब सामने से लड़ नहीं सकते, शी जिनपिंग जो है वो सामने से कह देते हैं। अब चाइना से लड़ने की हिम्मत तो है नहीं, चाइना से भिड़ने की हिम्मत भी नहीं है। सो ऐसे में जो चाइना ने कहा उसी को तोड़ मरोड़ कर अपने लोगों को पेश करने की उनकी आदत कभी ठीक नहीं होगी। अब ऑफ कोर्स अमेरिका की हालत क्या है इस वक्त, ये बताने में हमें कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें सोचने की जरूरत है। वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन से कि अमेरिका जो है वो डिक्लाइनिंग देश है। मतलब उसने जो किया है वो तो जो बाइडेन ने भी नहीं किया, मतलब जो बाइडेन ने कितना भी गंदा काम किया हो, लेकिन ट्रंप ये तो मतलब अनदर लेवल पर है। सो शी जिनपिंग ने किसकी तरफ इशारा किया था, हम सबको पता है, ट्रंप, वो आप ही की तरफ था। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि है अगेन माधुरी दीक्षित का, क्योंकि इट्स अ बर्थडे और माधुरी दीक्षित यानी कि धक धक गर्ल के गाने चलते रहेंगे।
1: Dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta dinna ta din

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ट्रम्प वैसे तो ऑफकोर्स चाइना में पहुंचे हुए हैं, चाइना में बहुत कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड डील पर बात उनकी नहीं हो पाई है अच्छे से, बन नहीं पाई है अच्छे से, क्योंकि अमेरिका को तो सब कुछ चाहिए और चाइना को भी सब कुछ चाहिए। अब दोनों को ही सब कुछ चाहिए तो थोड़ा कम किसको चाहिए? किसी को भी नहीं। तो ट्रेड डील कैसे होगी ये तो हमें भी पहले ही पता था, जब इन्होंने गए भी नहीं थे। यू नो द फनी थिंग इज कि जब ये लोग गए, ऑफकोर्स आई एम गोना टॉक अबाउट द फनी थिंग्स नाउ, रोस्टिंग सेशन जो है वो ऑफिशियली शुरू हो रहा है। नाउ ट्रम्प जो है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एक ब्रीफकेस में, ब्रीफकेस से मेरा मतलब एक एयरलाइन में अपने सारे बड़े बड़े व्यवसायियों को लेकर, बड़े बड़े मिलेनियर्स बिलियनियर्स को लेकर पहुंचे थे। उसमें एलन मस्क, टिम कुक और पता नहीं कितने ही लोग वहां पर जो है वो मौजूद थे। वो चाइना के साथ डील करना चाहते थे। चाइना ने फाइनली जो है वो डील किया है, उन्होंने 200 बोइंग प्लेन्स जो हैं वो ऑर्डर करे हैं। और जहां ट्रंप की मुलाकात के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि चाइना जो है वो 500 बोइंग प्लेन्स जो हैं, वो एयरक्राफ्ट जो हैं, वो एटलीस्ट ऑर्डर करेगा, लेकिन यहां पर चाइना ने नहीं किए। इसलिए चाइना ने नहीं किए इसलिए उनके शेयर्स जो है वो 4% नीचे गिर गए। बोइंग के प्लेन तो मुझे लगता है किसी को भी ऑर्डर नहीं करने चाहिए सच में। मतलब सच में हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि बोइंग के अलावा हम किसकी तरफ जा सके, क्योंकि बोइंग जो कर रहा है ना, मतलब अगर ये स्पेस क्राफ्ट बनाता है तो वो नहीं चलते, अगर ये प्लेन बनाता है तो वो गिर जाते हैं, मतलब करे क्या कोई। सो या बोइंग से लोग किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने उन्हें इतना तो मना लिया कि वो 200 एयरक्राफ्ट जो है उनसे ऑर्डर कर सके। चलिए ये हुई एक बात, ट्रेड डील पर और ज्यादा चीजों पर बात नहीं बन पाई। लेकिन एक चीज जो ये सब हो रहा था जब ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से मिल रहे थे, वहां पर एकदम नाच गाना चल रहा था, एकदम अच्छे से स्वागत हुआ, शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया, ऑफकोर्स वहां जाकर नहीं, जब वो वहां पहुंच गए तब उसके बाद उनका स्वागत जो है वो शी जिनपिंग ने किया। थोड़े से शी जिनपिंग मुस्कुराने की एक्टिंग भी कर रहे थे, बट हमको तो पता ही है कि वो कितना मुस्कुराना चाहते हैं, बिकॉज ही डजंट लाइक ट्रंप एट ऑल। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि ओके बिल्ली बिल्ली मौसेरी बहन जी हाँ। सो वो वाली सिचुएशन जो है वो यहां पर हुई, और एक दूसरे को बड़े ही अच्छे से एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ कहने की कोशिश की। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना ने तो इतना कह दिया कि यहां पर ये अमेरिका जो है और वेस्ट जो है वो डिक्लाइनिंग नेशंस की कैटेगरी में आता है। ट्रंप ने उसको पलट कर ये कह दिया कि अरे अरे ये तो जो बाइडेन के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पास नहीं, मैं तो मतलब अमेरिका को मार्स पर लेकर जा रहा हूं। अरे मार्स पर ही लेकर जाना पड़ेगा, जिस हिसाब से तुम्हारे हालात है अमेरिका को यहां पर कोई सहेगा ही नहीं, मार्स पर ही जाना पड़ेगा। जी हाँ, एक और चीज, जब वो दोनों मिल रहे थे तभी चाइना का एक खुफिया पुलिस स्टेशन जो है वो अमेरिका में चल रहा था, उसका पर्दाफाश किया गया। मतलब पर्दे के सामने तो दोनों तरफ से हाथ मिलाए जा रहे हैं और स्माइल एक दूसरे को तरफ किया जा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे चाइना जो है वो पूरी तरह से अमेरिका को खोदने में लगा हुआ है और अमेरिका उससे बचने की कोशिश कर रहा है। मतलब अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है आगे से, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगेन, जितने काले काम अमेरिका ने आज दिन तक किए हैं, सच में अगर उनका बदला चाइना सच में ले सकता है तो उसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू नो, चाइना इज नॉट अ गुड नेशन, बट अमेरिका इज द वर्स्ट। जी हाँ, इसी के साथ और भी आपको बताएंगे क्या हुआ, लेकिन इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.
6: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है. इसे हम बिन कॉइन कहते हैं. अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें. आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है. बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में. अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आज निव्या के साथ. दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं अब हमारे फेवरेट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज स्टार गेजिंग, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स. एंड आपको बताइए सारी चीजें हमें कितना एक्साइट करती हैं. एटलीस्ट मुझे बहुत ज्यादा करती हैं और मेरे कुछ लिसनर्स को भी बहुत ज्यादा करती हैं. आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो मिस्ट्रीज छुपी हैं ना, वो बहुत सारी अलग अलग यूनिकनेस के साथ आपके सामने आती हैं. लेकिन क्या आप उनको देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, क्या आप इंटरेस्टेड हो उनको देख पाने में, वो भी एक सवाल है. सो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक एस्टेरॉयड जो कि एक बास्केटबॉल कोर्ट के साइज का है, वो धरती के पास से गुजरने वाला है और आप मंडे को देख पाओगे. जी हाँ, सो मंडे को आप इसे देख पाओगे. और यहां पर इसका जो नाम है वो है 2026 JH2. जी हाँ, और ये एस्टेरॉयड जो है वो पहले नहीं दिखा था बहुत पहले, अभी इसे कुछ वक्त पहले ही देखा गया है. एरिजोना में पहली बार इसे स्पॉट किया गया था इसी महीने, और उसके बाद से जो है इस पर नजर रखी गई थी. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक बास्केटबॉल कोर्ट के साइज का है एंड ये एस्टेरॉयड है, तो दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि क्या ये अर्थ के लिए किसी भी टाइप का डेंजर जो है वो पोज करता है कि नहीं करता है. आपको मैं बता दूं कि ये डेंजरस नहीं है, ऑल्दो ये काफी करीब से, धरती के काफी करीब से होकर गुजरने वाला है, विच इज 56,000 माइल्स, और अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो 90,000 किलोमीटर्स के पास से ये धरती से गुजरने वाला है. जी हाँ, विच इज क्लोजर देन सम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, बट इट पोजेस नो इम्पैक्ट रिस्क. और साइंटिस्ट ने कहा है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप इसे स्पॉट करना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ छोटी टेलीस्कोप जो है वो काफी होगी. आपको कोई बहुत बड़ा गैजेट नहीं चाहिए होगा इसे देखने के लिए. जैसे मैंने कहा कि मंडे को आप इसे देख सकते हो, और कुछ इलाकों में इसे संडे को भी देखा जा सकता है. सो अगेन, आप इसे स्पॉट कर सकते हैं, और आप मुझे बताइएगा क्या आपको भी ये चीजें एक्साइट करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा करती हैं, और आई एम गोना वॉच इट एंड आई एम गोना डू इट. सो या, यू कैन डू इट टू. और यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.
9: शराब की गड्डी.

जी हाँ दोस्तों, फिर हम कहते हैं हम चाइना से कम्पीट करेंगे। कहाँ से कम्पीट करेंगे? चाइना में रोबोट हेल्प नाम की चीज शुरू हो गई है, फैसिलिटी शुरू हो गई है, और वहां पर आप लिटरली $2 में या $2 से थोड़ा सा ज्यादा सेंट्स में आप रोबोट को हायर कर सकते हो अपना घर क्लीन करने के लिए, और वो आपके घर पर आता है, वो आपके रूम्स को देखता है, वो डिसाइड करता है। किसी ने भी उसको कोई भी कमांड नहीं दी हुई है, वो खुद सोचता है और फिर उसके हिसाब से वो सारी की सारी चीजें जो है वो कर देता है। जी हाँ, अब ये चाइना में तो ऑलरेडी शुरू हो गया, बाकी की कंट्रीज में कमिंग सून है, मतलब जल्द ही ये आपकी कंट्री में भी आ सकता है, क्योंकि वही कंपनी आपकी कंट्री में भी अपना एक विंग जो है वो खोल सकती है। आप लोग बोलोगे कि यहाँ मतलब हम सारे कहां पर रह गए ना, लिटरली मतलब हम सारे यही सोचते रह गए कि ओके रोबोट्स आएंगे, फिर उसके बाद वो क्या क्या चीजें कर पाएंगे ये देखना होगा, और वो बहुत लंबी बात लग रही थी हमको। आई मीन बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज भी इस मामले में बहुत पीछे है, पर चाइना ने तो ठान लिया हम वो करके दिखा देंगे जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब इनको प्रूव करेंगे कि चाइना इज चाइना एंड इट विल बी चाइना। जी हाँ, यहाँ पर लिटरली रोबोट हेल्प, जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी आई वॉज लाइक वाओ। और वो रोबोट सच में आता है और बड़े स्टाइल से आपके पूरे घर को स्कैन करता है, फिर वो देखता है कि क्या साफ होगा, कैसे साफ होगा, कौन से रूम में पहले जाके उसे सफाई करनी है, वो भी वो खुद डिसाइड करता है। मतलब आप उसे कुछ नहीं बोलते हो, वो सारी की सारी चीजें खुद देखता है। अभी आने जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी ऐसा फोन शुरू कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा मतलब 100x स्मार्टर हो जाएगा जो आपका अभी का स्मार्टफोन है, और यहां पर देखिए ये वर्ल्ड ही स्मार्ट हो गया, मतलब रोबोट। अब हमें दूसरी नॉर्मल हेल्प की जरूरत है ही नहीं, हमको रोबोट हेल्प मिलने वाली है। वाह क्या बात है, चाइना इज डेफिनेटली लिविंग इन 2060s। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, और वो है स्लो मोशन अंग्रेजा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ रुख करने का। वेल आपको पता है, हमें पता है, लेकिन इन केस किसी को नहीं पता, आप बता देते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड शुरू हो रहा है, वक्त हो गया है और घड़ी ने इशारा भी कर दिया है। सो ऑफिशियली शुरू हो रहा है और इसमें हम पूरी तरह से पुराने गानों को प्ले करते हैं, पुराने गानों को आपको सुनाते हैं, आपके पुराने गानों से रिलेटेड फरमाइशों को अपने इस प्रोग्राम में प्ले करते हैं, पुराने किस्से आपको सुनाते हैं, उन स्टार्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी आर्टिस्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपनी फरमाइश के साथ आ जाइए। वेल ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि शर्त यही है कि फरमाइश होनी चाहिए पुराने गानों से रिलेटेड, क्योंकि ये है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट और ये है हमारा फेवरेट सेगमेंट। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। It is one of my most favorite songs and which is like Tera Mera Pyar Amar. So like it comes on top, literally ye utna zyada pasand hai mujhe aur mere bahut sare listeners ko bhi. So is gaane ko sunne ke piche wajah bhi hai, kyunki kal hi ki baat hai, main social media chala rahi thi aur usme ek family ne is gaane ko milkar gaya hai, matlab teen logon ne isko milkar gaya hai aur bahut hi khoobsurti se gaane ki koshish ki hai. So again tabhi mujhe lag gaya tha ki old is gold segment jab shuru hoga kal to main is gaane ko play करने वाली हूं। सो ये है स्टार्टिंग ऑफ ओल्ड इज गोल्ड, जो कि इससे ज्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी।

जाए उतने कम है। मतलब लता जी क्यों कहलाती हैं, वो सुर कोकिला क्यों कहलाती हैं? मुझे नहीं लगता कि इस गाने के बाद मुझे किसी भी शब्द की जरूरत है उसको बयान करने के लिए। जी हाँ, अब लता जी की गायकी की तो हमने बात कर ही ली, लेकिन जिस खूबसूरती से साधना ने इस गाने को परफॉर्म किया है, लिटरली मतलब मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहले इसे देखा था ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में ही, और देवानंद साहब अपनी ही प्यारी प्यारी वो अदाएं दिखा रहे हैं और साधना चांद को निहार रही है, इधर देख रही है उधर देख रही है, और इस खूबसूरत गाने को इतनी खूबसूरती से लिप सिंक कर रही है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो गा नहीं रही है इस गाने को। मतलब तब तक मुझे नहीं लगता था कि साधना या जो भी एक्टर है वो सच में उस गाने को नहीं गाता है, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि वो मतलब वो इतनी परफेक्टली लिप सिंक करते थे कि ऐसा लगता था कि उन्होंने ही गाया है। वो तो बाद में पता चला कि हाँ, सिंगर्स कोई और होते हैं, एक्टर्स लिप सिंक करते हैं। जी हाँ, अब साधना की ब्यूटी के बारे में अगर बात कहें तो अगेन उनकी ब्यूटी, उनकी अट्रैक्टिवनेस के बहुत सारे लोग दीवाने थे और उनकी मॉडर्न छवि के भी बहुत ज्यादा लोग दीवाने थे। ऑल्दो इस वाली मूवी में असली नकली में उन्होंने बड़ा ही एकदम पूरा यू नो इंडियन सा कैरेक्टर प्ले किया है। आई एम सो सॉरी, जी हाँ, इंडियन सा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जहां पर उन्होंने इतने मॉडर्न कैरेक्टर्स प्ले किए हैं कि आज भी उनकी पहचान उनसे मॉडर्न हीरोइन के रूप में की जाती है। लेकिन एक चीज जो साधना ने हमेशा के लिए अपने नाम कर ली, जी हाँ, वो थी बैंग्स। अब जब भी हम स्टाइल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं देवानंद साहब की, हम बात करते हैं राजेश खन्ना की, कैसे देवानंद साहब ने वो खूबसूरत काले लिबास को फेमस कर दिया है ना, और वो खूबसूरत कैप को फेमस कर दिया, राजेश खन्ना ने वो सफेद कुर्ता पैजामा फेमस कर दिया। अब साधना भी उनमें से एक थी। एक्ट्रेसेस के मामले में साधना उन एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्होंने स्टाइल स्टेटमेंट बना दिया, जी हाँ, और वो थी उनकी फ्रिंजेस यानी कि उनकी बैंग्स, जिसे साधना कट के नाम से जाना जाता है। मतलब वो जो हेयर कट है वो साधना कट के नाम से ही फेमस हो गया। बैंग्स को इंडिया में साधना कट के नाम से जाना जाता था और आज भी बहुत सारे लोग उसे साधना कट कहते हैं। इमेजिन, आपने काम तो किया ही है, आप बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट तो है ही, आपने बहुत नाम भी कमाया, लेकिन आप स्टाइल स्टेटमेंट बन गए। मतलब आप हमेशा के लिए आपने अपने आप को एसोसिएट कर लिया किसी पर्टिकुलर स्टाइल के साथ, क्या बात है, राइट? लेकिन ये बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस नहीं कर पाई थी। साधना वाज अ बिग स्टार, लेकिन उन्होंने ये भी कारनामा कर दिखाया था। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, आई थिंक आज नो जो है ना वो क्लासिक फेवरेट्स का दिन है, तो मैंने सोचा कि फ्राइडे का दिन है तो क्लासिक फेवरेट जो है वो प्ले करने चाहिए। सो तेरा मेरा प्यार अमर के बाद अब मैं लग जा गले, ऑल्दो ये थोड़ा सेंटी टोन की तरफ है, पर ये गाना कितना खूबसूरत है इसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, राइट?

क्या कहूँ मैं इस गाने के बारे में। एंड यू नो व्हाट, जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ एक चीज तो पक्की हो जाती है कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी हंसी के पल, हंसी के मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई भी काम जो मैं करना चाहती हूँ उसको कल के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। सो अगर ये गाना आपको वो नहीं सिखाता है तो उस दुनिया में कोई भी चीज आपको वो नहीं सिखा सकती। सो हमेशा चेरिश कीजिए, अपने लोगों को चेरिश कीजिए, मोमेंट्स को चेरिश कीजिए, और जो आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए, मतलब कल या परसों पे मत छोड़िए। जी हाँ, इसी के साथ अब आपको सुनाते हैं गुलजार का किस्सा। जी हाँ, गुलजार साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में तो बड़े बड़े सितारे खुद ही कह देते हैं। तो आपको ये बताया जाए कि गुलजार साहब लिटरली जब फिल्मों में नहीं आए थे, मतलब जब उन्होंने लिखना शुरू नहीं किया था फिल्मों के लिए, गाने लिखना नहीं शुरू किया था, उससे पहले वो एक मैकेनिक का काम किया करते थे। जी हाँ, लिटरली वो एक गैराज में मैकेनिक का काम किया करते थे। जो गाड़ियां खराब हो जाती थी उनको वो ठीक किया करते थे, और छुप छुप के अपने पिताजी से छुप छुप के पोइट्री लिखा करते थे, क्योंकि उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब। उनके पिता को लगता था कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ये बाकी की चीजें तो बेकार है। लेकिन गुलजार साहब, जिनको सच में पोइट्री से कितना प्यार है उसके बारे में भी मुझे क्या ही कहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी हर एक पोइट्री में जो जान है ना, वो खूबसूरती है। बाकमाल बाकमाल। तो गुलजार साहब को मौका भी बहुत ही पेचीदा तरीके से मिला। अगर दो लोगों की लड़ाई नहीं होती तो शायद गुलजार साहब को ये फिल्म इंडस्ट्री मिलती नहीं, और इस फिल्म इंडस्ट्री को गुलजार साहब भी नहीं मिलते। तो हुआ कुछ ऐसा कि बंदिनी पिक्चर के लिए शैलेंद्र जो कि लिरिसिस्ट थे और एसडी वर्मन जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन दोनों का हो गया झगड़ा। जी हाँ, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया। लेकिन शैलेंद्र जानते थे गुलजार को, और उन्होंने ही खुद कहा गुलजार को कि तुम जाओ, जाकर बिमल से मिलो और यहां पर उनसे ये बात कहो। जी हाँ, उनसे कहो कि मैं काम करना चाहता हूं। उन्होंने उनसे डायरेक्टर से मिलने के लिए कहा, पर फिर क्या था, गुलजार साहब गए और उसके बाद बना ये खूबसूरत सा गाना मोरा गोरा अंग ले ले। मोरा गोरा अंग ले ले, और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो लता जी ने गाया है। और ये गाना नहीं होता, मतलब ये लड़ाई नहीं होती जो कि शैलेंद्र और एसडी वर्मन साहब के बीच में हुई थी, अगर ये लड़ाई नहीं होती तो गुलजार साहब हमें कैसे मिलते, राइट? आप लोग बोलोगे कि चले यहां नहीं मिलते कहीं और मिल जाते, गुलजार साहब इतने टैलेंटेड थे, कहीं ना कहीं तो आना ही था उन्हें। जी हाँ, सो अगेन ये खूबसूरत सा गाना जो कि लिटरली गुलजार साहब की शुरुआत है हिंदी फिल्म जगत में, सुनिएगा जरूर, बहुत ही खूबसूरत है, और लता जी ने बहुत ही खूबसूरती से इसे बयां भी किया है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि घड़ी इशारा कर चुकी है निव्या शर्मा। अब तुमको होगा जाना, क्योंकि हमें और भी है काम करने। और ठीक है, आपने बोला हम समझ गए, और अगर आप नहीं भी बोलते ना तो भी समझ जाती हूँ। मतलब हमारे बीच में इतनी अच्छा कनेक्शन बन गया ना, मेरे और मेरे लिसनर्स के बीच में, कि वो बोलते भी नहीं है, मुझे फिर भी समझ आ जाता है। सो बस फिर अब मैं जा रही हूँ, अब मैं आपसे मिलूंगी मंडे को, लेकिन कल भी होगा मिलना। हाँ, मतलब ज्यादा देर के लिए नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, पर होगा जरूर, वो भी प्रोग्राम टॉप 10 हॉट 10 में, जो कि इवनिंग वाइब से थोड़ा हटके है, अलग है, लेकिन मजेदार वो भी पूरा का पूरा है। सो या टॉप 10 हॉट 10 में कल मिलना होगा, और फिर उसके बाद मिलना होगा इवनिंग वाइब में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल ऑफ कोर्स मजे करने हैं, फन करना है, और धुरंधर द रिवेंज देखनी है, क्योंकि धुरंधर द रिवेंज जो है वो हो चुकी है रिलीज नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ, धुरंधर द रिवेंज जो है, धुरंधर 2 जो है, ऑफ कोर्स इट्स अ ए रेटेड मूवी, आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारी कर्सिंग है और बहुत कुछ है। सो अगेन, यू कैन वॉच इट विद योर किड्स, बट इट इज अ गुड मूवी दैट I can say for sure you are gonna love it। But again, कुछ चीजों के बारे में आपको पता तभी चलेगा अगर आपको पता हो कि भारत में, यानी कि इंडिया में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे और वो क्यों हुए थे। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा तो शायद आप इसे मूवी को और भी ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। लेकिन अगर आपने इसको देखना है तो धुरंधर देखनी पड़ेगी, जो कि अगर आपने नहीं देखी अभी तो पहले वो देखिए, और फिर धुरंधर द रिवेंज देखिए, और फिर अपने वीकेंड को मना डालिए। आई मीन यू कैन कॉल इट अ वीकेंड आफ्टर दैट। सो या दैट्स अबाउट इट। एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, अगेन इट्स अ क्लासिक फेवरेट, सो वट कैन बी बेटर देन दिस। जी हाँ, बाय, सी यू, टाटा।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 04706318 प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
10: यार, आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
9: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: नमस्कार, आप सुन रही हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन बैंड द जंगल जाइंट्स का जलवा। ब्रिस्बेन के अपने बैंड द जंगल जाइंट्स का नया एल्बम ARIA यानी कि आर्या चार्ट पर नंबर वन पर पहुंच गया है। शहर में आज जश्न का माहौल है। इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग वीक का समापन। ब्रिस्बेन कन्वेंशन सेंटर में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई मैन्युफैक्चरिंग वीक का कल समापन हुआ। इसमें 230 से ज्यादा कंपनियों ने रोबोटिक्स और AI का प्रदर्शन किया। वहीं ब्रिस्बेन वेदर अपडेट। आज ब्रिस्बेन का मौसम सुहाना रहने वाला था, लेकिन शाम को हल्की बूंदाबांदी की संभावना बताई गई है। वीकेंड के प्लान्स सोच समझ कर बनाने के लिए भी कहा गया है। इसी के साथ साउथ बैंक में नया आर्ट फेस्टिवल। ब्रिस्बेन के साउथ बैंक में आज से एक नया स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल शुरू हो रहा है, जहां स्थानीय कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। वहीं ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर नई सुविधाएं। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज से नई स्मार्ट चेक इन मशीनें शुरू की हैं, जिससे पैसेंजर्स का काफी समय बचने वाला है। वहीं क्वींसलैंड इकोनॉमी में उछाल। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिस्बेन और पूरे क्वींसलैंड की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इस साल $29 बिलियन का योगदान दिया है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला। सीबीआई ने आज सुबह दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक के इस मामले में अब तक 14 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। वहीं भारत में सोना हुआ सस्ता। आज सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना करीब 16,000 रूपये प्रति ग्राम के आसपास है। वेस्ट एशिया के तनाव के बावजूद घरेलू बाजार में ये गिरावट निवेश का अच्छा मौका मानी जा रही है। वहीं दिल्ली में हाइड्रोजन बसें। प्रदूषण कम करने के लिए आज से दिल्ली में सेंट्रल विस्ता इलाके में नई हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बसें शुरू कर दी गई हैं। वहीं विदेशी निवेश पर राहत। सरकार विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए विदहोल्डिंग टैक्स यानी कि विदहोल्डिंग टैक्स में कटौती पर विचार कर रही है। इससे आने वाले दिनों में देश में बड़ी विदेशी कंपनियों का पैसा आने की उम्मीद है। वहीं चंडीगढ़ में आग की घटना। कल देर रात चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित एक क्लब में भीषण आग लग गई, जिससे काफी फर्नीचर जलकर खाक हो गया। राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं कर्नाटक में हिजाब विवाद पर राहत। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाने का फैसला किया है। वहां के छात्रों ने इसे अपनी जीत बताया है और अब वे बिना किसी राजनीति के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। वहीं इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले यूएस चाइना ऐतिहासिक मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी चीन यात्रा के दूसरे दिन शी जिनपिंग से मिले। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर कई अहम समझौते पर सहमति बनी है। वहीं ओपन AI का नया धमाका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आज ChatGPT 6 यानी कि GPT 6 लॉन्च कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि ये पहले से कहीं ज्यादा इंसानी भावनाओं को समझने और जटिल काम करने में सक्षम है। वहीं आर्कटिक विवाद और UN। आर्कटिक क्षेत्र में संसाधनों को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN में आज एक बड़ी बैठक हो रही है। कई देश इस बर्फीले इलाके के मालिकाना हक को लेकर आमने सामने हैं। वहीं एक्सपे को मिला बैंकिंग लाइसेंस। एलन मस्क की कंपनी एक्स यानी कि जो कि पहले ट्विटर थी, को अब बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है। इसका मतलब है कि अब आप सोशल मीडिया ऐप से ही बैंकिंग से जुड़े सारे काम कर पाएंगे। इसी के साथ क्लाइमेट अकॉर्ड 2030। अमेरिका और चीन ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक नया समझौते पर दस्तखत किए हैं। पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये आज की सबसे अच्छी खबर है। वहीं UAE गोल्ड मार्केट। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बावजूद दुबई के ज्वेलरी मार्केट में 15% की ग्रोथ देखी गई। टूरिस्ट के लिए दुबई अब भी सोने की खरीदारी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ साथ खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले विराट कोहली का नौवां आईपीएल शतक। रायपुर में आरसीबी ने केकेआर को 6 विकेट से हराया। इस मैच में विराट कोहली ने अपना नौवां आईपीएल शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वहीं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी ने शानदार जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं नीरज चोपड़ा का 90 मीटर क्लब आज प्रैक्टिस सत्र के दौरान नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर 90 मीटर के मार्क को छुआ है। फैंस को उम्मीद है कि अगले टूर्नामेंट में वे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। इसी के साथ आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस, पंजाब किंग्स की लगातार 5 हार के बाद अब उनकी प्लेऑफ की राह मुश्किल हो गई है। वहीं मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर हैं। वहीं किलियन एम्बापे का बयान, रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने एक मजाकिया इंटरव्यू में कहा कि टीम में इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं कि वे खुद को चौथे नंबर का स्ट्राइकर महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

सोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव के सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया.
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें.
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से. और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं.
2: मुझे तो पता ही नहीं था. अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो.
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस. और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर. याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर.
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहें अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: Mixing in the house.

वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए हो जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वंसन वाने हम तेजी आप चीज सुनते शलक दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा सारा बहुत सोहना जड़ा शुरू हो चुका है जी। तो इन्हें गलों नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तुसी की खाना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी वंसन वाने हम साडा फेसबुक पेज है जी bisoni@bisoni.com। साडी ईमेल आई डी है जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी अपना पर साडे नाल गल्लां बातां देखो जरूर जरूर करते रहा करो, है ना। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो फटाफट दे नाल। ते मैं बस हुणे वापस सुनी हाँ थोनों कला कि दिन छड़ के जाना एक गीत थोनों सुनानी हैगी है। मैं तुसी इन्हां गीतां नूं इंजॉय करो। मैं हुणे वापस आई

जिसनू कदे कोई भुल ही नहीं सकता। बेशक वह अज साडे विचकार नहीं है, पर हमेशा जो भी स्क्रीन ते आउंदी है ना तो पुरानियां यादां ताज़ियां कर दिंदी है। नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी ने ना बहुत छोटी उम्र विच एक्टिंग दी दुनिया विच कदम रख लिया सी। अपने करियर दे दौरान श्रीदेवी ने सदमा, नगीना, चांदनी, इंग्लिश विंग्लिश, मिस्टर इंडिया, चा जुदाई, चालबाज वर्गियां कई यादगार फिल्मां कीतियां जिन्हां तों उन्हां नूं वक्री पहचान मिली। तां मैं सोचिया कि अज श्रीदेवी दियां कुछ फिल्मां बारे गल करिए, पर उन्हां फिल्मां बारे नहीं जिन्हां दे करके उह फेमस होई, क्योंकि उह फिल्मां तां सब नूं पता ही है कि ने जुबान ते रहिंदियां ने ना, जिवें मिस्टर इंडिया हो गई, चालबाज हो गई, इन्हां नूं किवें भुल सकदा कोई। हाँ, उन्हां फिल्मां बारे गल करदे आं जिन्हां नूं श्रीदेवी ने रिजेक्ट कर दिता सीगा। दस दो, तुसीं हैरान रह जाओगे जे तुसीं उन्हां फिल्मां बारे जाणोगे। तां करदियां तुहानूं हैरान, पर पहला सुनो एक गीत।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हेलो जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दे नाल से बने हुए। इस लिस्ट दे विच सब तो पहला नाम केड़ा आंदा हैगा है? केड़ी लिस्ट? उही लिस्ट के श्रीदेवी ने केड़ियां केड़ियां फिल्मां रिजेक्ट कीतियां ने, तां ओह लिस्ट दस रही हां मैं। तां इस रिपोर्ट्स दे विच, इस लिस्ट विच सब तो पहला नाम बाहुबली आंदा। रिपोर्ट्स मेरे मुंह चों तां निकलिया क्योंकि रिपोर्ट्स दे आधार ते तां सारी गल करनी हैगी आ। तां देखो, मीडिया रिपोर्ट्स दी जे मन्नीए, बहुत सारे लोग वैसे मीडिया दीआं गल्लां नूं सच नहीं मन्नदे, पर बहुत सारियां उदां ही नहीं करदे हुंदे, सच हुंदियां ने। तां देखो, मीडिया रिपोर्ट्स दी मन्नीए तां श्रीदेवी नूं फिल्म बाहुबली विच शिवगामिनी दा रोल ऑफर होया सी। शिवगामिनी दा रोल तो सबनों याद है ना, बाहुबली दे विच मोस्ट इंपोर्टेंट रोल, बाहुबली दी मां दा रोल। पर उन्होंने इसनों मना कर दिता सी ते किरदार रामिया कृष्णन दी चोली विच पिया सीगा, है ना। बहुत ही स्ट्रोंग ते बहुत ही सोहना, ते हैरानी हुंदी है ना कि श्रीदेवी ने किवें मना करता सी इस रोल दे लई।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटाशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

जी एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हो। अमिताभ बच्चन के नाल श्रीदेवी ने बहुत सारिया फिल्मा की दिया। देखो सवाल थोड़े लिए फिर मैं यही छड़ दिनी हाँ कि तुम दसो कि अमिताभ बच्चन के नाल कि फिल्मा है जो श्रीदेवी ने कितिया या कि सब तो ज्यादा हिट रही है, दसो दसो तुम जवाब दो। रेडियो बसवाणी 107.1 साइड फेसबुक पेज है bisoni@bisoni.com साड़ी ईमेल आई टी है, कोई भी जरिया अपना के जवाब दो। तो मैं हूँ इस जुड़ी हुई अगली फिल्म का नाम दस दिनी हाँ जी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, तो वह फिल्म सी मुहब्बतें। जी हाँ मेकर्स इस मूवी अमिताभ बच्चन के ओपोजिट श्रीदेवी नू लेना चाहते सी पर उन्होंने उसनू करन तो मना कर दिता सी। इस फिल्म नू भी करती सी कोरीना, बाद विच किरदार ही फिल्म तो हटा दिता गया, किसी ने रोल किया ही नहीं।

जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाने वंसरों एम जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। एक फिल्म सी जिसने काजोल नू बहुत वड्डा स्टार बना दिता। शाहरुख खान तो पहला ही स्टार सी के ते इन्हां दी जोड़ी नू इस फिल्म तो बाद कुछ ज्यादा ही पहचान मिली सी। फिल्म का नाम है जी उस विच शिल्पा शेट्टी भी सी। आ गई ना यार, बिल्कुल सही पहचान है। फिल्म का नाम है जी बाजीगर। इस फिल्म नू भी श्रीदेवी ने करती सी कोरी ना। इस फिल्म विच श्रीदेवी नू डबल रोल ऑफर होया सी पर एक्ट्रेस ने मना कर दिता। फिर जदों उन्होंने मना कर दिता ना तो बाद विच मेकर्स ने फिल्म की कहानी विच बदलाव ही लिया। देखो पर एक चीज तो उसे समझो कि श्रीदेवी दी किड्डी तकड़ी इंपोर्टेंस थी ना कि जिहड़ी फिल्म नू कईआं नू मना करदी सी तां उस दे विचों किरदार ही हटा दिता जांदा सी बाजीगर दे विचों मुहब्बते दे विचों। अगे भी मैं दसदी हां इस बारे, सबर रखो।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सर वाने ते चार छे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। अगली फिल्म जिहड़ी इस लिस्ट दे विच आउंदी हैगी है जिसनों रिजैक्ट किया सी श्रीदेवी ने ओ सी जी बहुत ही हिट सुपर डुपर हिट फिल्म बागवान। तो देखो अमिताभ बच्चन की इस फैमिली ड्रामा विच उन्हां दी ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार हेमा मालिनी ने निभाया हैगा। ये रोल पहला हेमा मालिनी नूं ऑफर नहीं होया सी, मतलब कि हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं हैगी अमिताभ बच्चन की इस अमिताभ बच्चन की इस फिल्म के लिए मेकर्स की। यह रोल पहला श्रीदेवी के हिस्से आया सी पर उन्होंने इस नूं रिजैक्ट कर दिता। रिजैक्ट होया तो फिर ये हेमा मालिनी कोल गया तो नो डाउट हेमा मालिनी इस रोल के बिल्कुल परफेक्ट लगी।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू से। Q11700, द मास्टर नंबर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, अ हेरिटेज क्वींसलैंड प्लेट, फर्स्ट इश्यूड इन 1922, अ पीस ऑफ क्वींसलैंड हिस्ट्री विद फुल प्रोविनेंस, ओन्ड आउटराइट, ट्रांसफर रेडी। For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

हाँ जी, तो एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक बहुत ही जबरदस्त सोहनी जही फिल्म सी, ते उस फिल्म का नाम हैगा है जी दिल तो पागल है। शाहरुख खान स्टारर मूवी हैगी है, बहुत ज्यादा पसंद भी की गई सी। इस पूजा किरदार हैगा जिहड़ा ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी। पूजा हुण तुसीं पहले सोचो सोचो सोचो कि पूजा केड़ा किरदार सी। ओ श्रीदेवी नूं ऑफर होया सी तां श्रीदेवी ने मना कर दिता सी, तां इह रोल बाद विच किसे होर दे हिस्से आया सी। हुण तुहानूं पता लग गया ना कि पूजा किरदार किसदा सी। जी हाँ, पूजा किरदार निभाया सी माधुरी दीक्षित ने, पर इस दे लई पहला चुनिया गया सी श्रीदेवी नूं।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एफएम ते जी आर जे संदेश अलग दिनास से बने हुए। एक और शाहरुख खान की मूवी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजेक्ट की थी, ते वो मूवी सी जी डर। डर दे विच पहली बार तो शाहरुख खान नैगेटिव रोल दे विच नजर आए सी। शाहरुख खान सनी देओल की फिल्म है डर, जूही चावला ने किरण का किरदार निभाया सी। बहुत घट लोग जानते हैं कि यह रोल पहला श्रीदेवी को ऑफर होया सी, पर श्रीदेवी ने इसे मना करता सी, तो फिर रोल गया जूही चावला के हिस्से। नो डाउट जूही चावला ने इसे बहुत ही वधिया तरीके दे नाल निभाया है, पर मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी थे। हुण इमेजिन करते हैं जो श्रीदेवी होंगी तो किस तरह के लगनी सी ये फिल्म।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

हाँ जी, वेला तो हो चुका है, थोड़े तो इजाजत लैन का, थोड़ा टाटा बाय बाय कहण का। पर देखो हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक फिल्म थानू दसनी हैगी है जिहड़ी श्रीदेवी ने रिजैक्ट की थी। तो उस फिल्म जी बहुत ही खूबसूरत जी फिल्म बेटा। जी हाँ, इस मूवी के लिए मेकर्स की पहली पसंद श्रीदेवी सी। श्रीदेवी ने जो मना करता सी ना, तो बाद दे विच इस फिल्म दे विच माधुरी दीक्षित नू कास्ट किया गया सी, ते उन्हां दे हिस्से चले गए। तो उन्होंने जोड़ी अनिल कपूर दे नाल हिट भी साबित हुई, क्योंकि इस तो पहला तक तो अनिल कपूर दे नाल जोड़ी हैगी है जिहड़ी वह श्रीदेवी की काफी ज्यादा पसंद की जाती सी। देखो ये सारिया फिल्मां हैगियां ने जिहड़ियां श्रीदेवी ने रिजैक्ट करतीआं। हुण तुसीं इंज करो कि दसो कि कहड़ी फिल्म तुसीं चाहुंदे हो, या तुहानूं लगता है कि काश ये फिल्म दे विच श्रीदेवी नू कास्ट किया जाता तो यह फिल्म बहुत ज्यादा सोहनी होनी सी, है ना। दस दसो फटाफट दे ना। रेडियो बरसानी 101.9 साडा फेसबुक पेज है जी, बरसानी @बरसानी.com साडी ईमेल आई डी है। जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा है अपनाओ, साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहा करो, है ना। तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो। बाकी मैं तो यही कहने है जी कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, कल मिलते हैं, करते मुलाकात, सत श्री अकाल।

0: मेरा मुंह।
1: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, sab theek hai. Bas mummy papa India mein akela feel karte hain. Unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota. Kal ko emergency ho jaye to?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल। ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: दीवाना।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स।

फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks Tanvire, I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life, talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235, that is 0400-234-235.
3: Yaar sab theek hai, bas mummy papa India mein akela feel karte hain, unorganized helpers pe bharosa bhi nahi hota, kal ko emergency ho jaye to?
4: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
4: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
12: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
11: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
12: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
11: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

हमारा जीवन भगवान के नाम के बिना, सुमिरन के बिना व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिन्हें सुनने से ये बात स्पष्ट हो जाती है, समझ में आती है।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिनकॉइन कहते हैं। अपने बिनकॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमत प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

मित्रों, आज 16 तारीख में सन 2026 है और ब्रिस्बेन का मौसम उसी तरह है जैसे पिछले सप्ताह यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक आपने देखी है। और आज भी ब्रिस्बेन इप्सविच सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट में हल्की बारिश होती रहेगी और ब्रिस्बेन में 6:21 पर सूर्य उदय हुआ है और 5:06 पर सूर्यास्त होगा। यहाँ पर 23 रहेगा अधिक से अधिक तापमान, कम से कम 17, और हवा का रफ्तार जो है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। और साथ में इप्सविच ले चलते हैं जहाँ पर 23 दिन में रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 11, और सनशाइन कोस्ट तथा गोल्ड कोस्ट पे इसी तरह का मौसम रहेगा, भीगा भीगा, लेकिन सनशाइन कोस्ट में 22 दिन में रात्रि को 18, हवा का रफ्तार 16। और फिर आपको गोल्ड कोस्ट ले चलते जहां 23 रहेगा दिन में रात्रि को 17, हवा का रफ्तार 18। तो देखिए बहुत भीगा सा मौसम, फिजी द्वीप का भी कुछ कम नहीं है। और नेंडीज लंबा सा सुबह में यहां भी बारिश होती रहेगी और 28 रहेगा दिन में लंबा सा और नेंडी में, लेकिन 11 रहेगा हवा का रफ्तार नेंडी में और लंबा सा में 18, और 6:26 पर सूर्य उदय हुआ है और 5:45 सूर्यास्त होगा। इसके बाद ऑकलैंड न्यूजीलैंड ले चलते जहां धूप निकली हुई है, 17 दिन में रात्रि को 8, हवा की रफ्तार 11, और 7:11 पर सूर्य उदय हुआ है, 5:22 पर सूर्यास्त होगा। और वेलिंगटन में ज्यादातर आकाश पर घटा छाई रहेगी, 11 दिन में रात्रि को 8, हवा की रफ्तार 24। नई दिल्ली सनशाइन और अमृतसर में दोनों केंद्रों पर धूप निकलेगी। नई दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है और 40 रहेगा दिन में यानी 40, अब रात्रि के समय 28, 16 हवा का रफ्तार, और 5:32 पर सूर्य उदय होगा और 7:06 पर सूर्यास्त होगा। अमृतसर में 36 मैक्सिमम, 26 मिनिमम, 13 विंड स्पीड। इन मुंबई मोस्टली ज्यादातर कहते हैं कि धूप निकलेगी और यहाँ पर 33 दिन में रात्रि को 30, हवा का रफ्तार 24। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के मौसम के खबर जो हमें मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन और हमारे स्थानीय ओवरसीज वेबसाइट से प्राप्त हुए हैं। 16 तारीख है मित्रों, और 16 तारीख में आ चुका है, आधा महीना तो बीत चुका है, बहुत तेजी से ये भी महीना भाग रहा है। और आप सबका स्वागत करते हुए परमानंद शनिवार के सुबह का कार्यक्रम में उपस्थित हो चुका हूँ। और साथ में आपको कह दूं कि अमला जी बहुत सुबह से यानी कि वहाँ तो दिन है ना, प्रोग्राम को सुन रही हैं, और इसके साथ साथ बहुत हमारे और अन्य लोग हैं जो न्यूजीलैंड कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। आप जहाँ से हैं, जिस हाल में भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है जी, और मालिक आपके ऊपर अच्छा समय व्यतीत कराता रहे और आपके दिन खुशियों से भरा रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्टूडियो का नंबर एक बार फिर बतला दें, 3279-1701, 3279-1701, और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो 0411-127-035, ये मेरा मोबाइल नंबर है, दोबारा बोलता हूँ 0411-127-035। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हुए भीगा मौसम के तरफ चलते हैं। और पहला गीत आज जो है वो कुमार सानू द्वारा अदा किया गया है, प्यारा सा गीत है। और कभी कभी ऐसे कुछ ख्याल आ जाते हैं, सुबह का बेला है और सुबह का बेला में कुछ ना होता रहता है ना, तो चलो सुनते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का शुरुआत आपको बेहद पसंद आएगा।

जय मित्रों, कैसा लगा गीत? और गीत के बारे में थोड़ा सा कह दूं, लेकिन उससे पहले भाई राम राम बाबू, प्यार से हम आपको बाबू कहते हैं। हरण जी, आप भी बाउलेबू का सब प्यार लेकर वहां पहुंच गए हैं, सिस्टर के घर, अमला जी के घर, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद आपका नाम सुनने को मिला और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसे गीत में देखिए, गीत में जावेद अख्तर साहब ने बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द चुनकर इस गीत को या बोलें एक गीत का निर्माण किए हैं। और एक भेंटवार्ता के दौरान वे कह रहे थे कि जब उनको विदु साहब ने कहा कि भाई मुझे एक फिल्म बनाना है लव स्टोरी, तो कैसे करेंगे 1942 लव स्टोरी, तो वो बोलते मैं सोचता रह गया कि मैं लिखूं तो लिखूं क्या। फिर रास्ते में टैक्सी में जा रहा था तो एक मैनीक्विन को देखा, मैनीक्विन को देखा, बोला अच्छा अब मुझे मिल गया। और उसी मैनीक्विन को याद करते उन्होंने ये जो शब्द का इस्तेमाल किए गीत में उसी के आधारित किया है, सब उसी पर रचे हैं। तो अच्छा लगा। और जब आर डी बर्मन जी का मचलता संगीत हो, जावेद साहब जी का लेख हो और साथ में सानू जी की आवाज़ हो, फिर क्या बात है। तो ये है बढ़िया सा। तो चलो, उम्मीद कर रहा हूँ बाबू आपका यात्रा अच्छी तरह रहे और खुशी खुशी घूमते फिरते जो भी कर रहे हैं वो करें। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आज कुछ ऐसे ही गाने हैं फेस्ट सेगमेंट में, पुराने में कुछ पुराने गीत हम लेकर आएंगे आपके लिए। और जो लोग हमारे प्रोग्राम को बाहर देशों से सुन रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। और भीगा मौसम तो है ही, लेकिन प्यारा सा मौसम है, ये प्यारे से मौसम में हम आपको याद करते हैं। और अगला जो गीत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसे कुमार सानू जी अदा कर रहे हैं और कविता कृष्णामूर्ति जी, बहुत प्यारा सा गीत है। शनिवार के सुबह हमारे यहाँ हुआ है, रहा आप जहाँ से सुन रहे हैं, कहीं शाम है, कहीं सुबह, कहीं मध्य रात्रि है, तो जो भी है जैसे भी है आनंद लीजिए, मेरा साथ देते रहिए।

पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

इम्पोर्टेड आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमरीका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या ना माने।

0: जय मित्रों, बिना पायल के बजे घुंघरू अभी आप सुन रहे थे और रेडियो ब्रिजवाणी की घड़ी में बस लगभग इस समय 6 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और परमानंद के साथ है यह संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। चलिए आगे विज्ञापन के तरफ और उसके बाद एक और गीत, फिर पुराने गीतों की तरफ।
1: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
0: तो मित्रों बढ़े आगे, हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, ये भी एक दो गाना है मगर इस बार उदित साहब हैं अलका जी के साथ। फिल्म का नाम है कोई आपसा, समीर साहब इसे रचे हैं और हिमेश रसमैया जी ने संगीत से संवारा है। चलो सुनते हैं।

0: क्या बात है मित्रों, गीत क्या बात है मित्रों, गीत के साथ साथ सात बज चुके हैं हमारे यहाँ ब्रिस्बेन में। और मौसम पर एक बार फिर नजर हम डालते हैं साउथ ईस्ट क्वींसलैंड के लिए। जो मौसम का खबर कुछ इस प्रकार है, ज्यादातर आज बस भीगा भीगा मौसम रहेगा। ब्रिस्बेन इप्सविच में 23 डिग्री दिन में और सनशाइन कोस्ट तथा सनशाइन कोस्ट में 22 और गोल्ड कोस्ट में 23 रहेगा। सबसे बढ़िया मौसम जो दिखाई दे रहा है मेरे को ओकलैंड का है। धूप निकलेगी, 17 रहेगा दिन में, और फिर नई दिल्ली में 40 रहेगा, वेरी हॉट। अमृतसर में 36, तो यहाँ बारिश नहीं है, तो ये बतला रहा था आपको। और जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं देश विदेश से, आपका तहे दिल से स्वागत है। बहुत यार दोस्त मेरे मित्र प्रोग्राम सुनते रहते हैं, तो चलो पहले हम एक खबर ले लेते हैं, खबर के बाद पुराने गीतों के कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। और तो क्या है, इंतजार करना पड़ेगा ना भाई।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
0: अमित, अब समय हुआ पुराने गीतों का, और पुराने गीतों के कार्यक्रम में मैं परमानंद आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, एक बार फिर भेंट कर रहा हूँ। जो जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी है, ईश्वर आपका कल्याण करे। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चले। एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है जिसे संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, और गीत को रचा है आनंद बख्शी साहब ने। अब भाई जब ये जबरदस्त लोग होंगे साथ में, तो जो सुर प्रदान किसने किए होंगे, कोई और नहीं ना, रफी साहब और गीतों की मलिका लता जी। बन के साथ ही प्यार की राहों में, हमसे कभी तुम ना जुदा होना।

जो मित्रों बन के साथी प्यार की राहों में हमसे कभी तुम ना जुदा होना क्या बात है। जब किसी से बहुत घनिष्ठ प्यार होता है तो हम ऐसे ऐसे वचन एक दूसरे के प्रति लेते हैं और वादा करते हैं कि भाई हम आपका साथ हमेशा देंगे, लेकिन कभी कभी समय चलते चलते लोगों के ख्याल बदल जाते हैं, रास्ता कुछ और चुन लेते हैं, फिर वहाँ दरार पैदा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखें ये बात।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: मित्रों, इस समय 9 मिनट हुए हैं 7:00 और चलें आगे बढ़ें। मेरा मित्र एंथैया नायडू जी का कॉल आया है दोस्तों, और वो सुनना चाहते हैं सीएच आत्मा जी द्वारा अदा किया गया एक बहुत ही पुराना गीत, और गीत के बोल कुछ ऐसे हैं कि तुझ बिन सुना प्रेम डगरिया। तो ये है वन ऑफ दोज मास्टरपीस सॉन्ग्स, आपके लिए हम बजाते हैं, एंथैया ली के बजाते हैं उनके पसंद पर। इसके साथ आपको भी इसमें जोड़ रहे हैं, इसके बाद हम फिर थोड़ा सा रुख बदलेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं सीएच आत्मा जी।

0: जी मित्रों, सी एच आत्मा जी थे और इसी के साथ साथ घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो 13 मिनट हुए हैं 7:00 और हम आगे बढ़ते हैं, 2 विज्ञापन बजाते हैं, उसके बाद पुराने गीतों को पुनः जारी करेंगे।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
0: और मित्रों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें, एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा गीत है, दिल को छू लेने वाला गीत है और इसे मुकेश साहब अदा कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ ब्रेकिंग रिज में जेम्स और शशि आप दोनों मुकेश जी के फैन हैं, और जेम्स भाई आप तो गाते भी हैं गाना, और मुकेश जी का गाना बहुत पसंद करते हैं। आपने आग्रह किया कि भाई मेरे लिए कोई एक बढ़िया सा गीत बजा दो, तो चलो बजाता हूँ। पर्दे पर राज कपूर साहब और नूतन जी हैं।

0: होगी।
1: जी मित्रों, फिल्म का नाम था दिल ही तो है। क्या बात है, दिल ही तो है, बहुत प्यारा सा गीत। एक गीत और बजाएंगे फिर हम राव जी को लेकर आएंगे। तो चलो इस विज्ञापन के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: मित्रों चलें आगे, और आगे चलते हैं और शिकागो में अमला जी और बाबू और परिवार एक साथ बैठे हुए हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो अमला जी, आई नो यू सिंग वेरी वेल, तो आपको एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं। लता जी का गाया हुआ है, साधना जी है पर्दे पर, फिल्म है मेरे महबूब तेरे प्यार में दिलदार। क्या बात है भाई, सुनते हैं।

0: जब तो तेरे प्यार में दीदार कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। बहुत खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे और हम अभी थोड़ी देर में राव जी को लेकर आएंगे, मगर उससे पहले एक खबर सुनिए।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: Apriya Shotagan, is samay 7:25 hue hain aur hamare saath jude hain Rao ji. Rao ji, namaskar. Swagat hai aapka Radio Brisbane par.
3: नमस्कार नमस्कार
0: प्रबंधन
3: जी।
0: नमस्कार जी, चलिए आगे। सुनाई दे रहा है?
3: आगे।
0: हाँ बोलिए।
3: आज मैं मस्तिष्क और मन पर विचार लेकर आया हूँ।
0: अच्छा जी।
3: मस्तिष्क में स्मृति या संस्कार का बहुत बड़ा संग्रह है। इंद्रिया जो ग्रहण करती है वह मस्तिष्क में संग्रहित हो जाता है। योग की भाषा में उसे हम वृत्ति या संस्कार और मनोविज्ञान की भाषा में उसे अच्छे संचय कोष कर सकते हैं। जब जब बाहर उत्तेजना मिलती है तब तब प्रतिघात होता है। हमने एक व्यक्ति को पहले देखा, वह स्मृति में नहीं रहा। 10 वर्ष बाद जैसे ही वह व्यक्ति सामने आया वैसे ही हमारे स्मृति तंत्र पर प्रतिघात हुआ। स्मृति जागृत हो गई। हमने उस व्यक्ति को पहचान लिया। यह प्रतिक्रिया प्रतिघात के कारण हुई, किंतु उसका संस्कार मस्तिष्क के संचय कोष में संचित था। जो संचित था वह उत्तेजना मिलते ही उत्तेजित हो गया। मन की क्रिया उत्पन्न हो गई। मन की क्रिया का संचालन मस्तिष्क के द्वारा होता है, इसलिए वह यांत्रिक क्रिया किसी का मस्तिष्क खराब हो जाए तब मन की क्रिया नहीं होती। मस्तिष्क के माध्यम से मानसिक चेतना प्रकट होती है। जब वह माध्यम बिगड़ जाता है तब वह क्रिया नहीं होती। जैसे टेप रिकॉर्डर का फीता घूमा, भाषा उसमें संग्रहित तो हो गई, किंतु वह भाषा पुनः तब प्रकट होगी जब यंत्र में कोई गड़बड़ नहीं है। यंत्र में गड़बड़ होने पर भाषा संग्रहित रहेगी किंतु प्रगत नहीं होगी। मन यांत्रिक क्रिया का प्रतिफल है, इसलिए उसे उत्तेजना कहते हैं। वह चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए उसे चेतन भी कहा जाता है। शरीर और चेतना दोनों भिन्न धार्मिक है, फिर भी इनका अनादि संबंध है। चेतन और अचेतन चैतन्य की दृष्टि से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वे सर्वथा एक नहीं हो सकते, किंतु सामान्य गुण की दृष्टि से अभिन्न है। चेतन शरीर का निर्माता है, उसका उसमें अधिष्ठान है, इसलिए दोनों पर एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। शरीर की रचना चेतना विकास के आधार पर होती है। जिस जीव के जितने इंद्रियां और मन विकसित होते हैं, उसके उतने ही इंद्रियां और मन के ज्ञात तंतु बनते हैं। वे ज्ञान तंतु ही इंद्रियां और मानस ज्ञान के साधन होते हैं। इन ज्ञान तंतुओं को शरीर से निकाल लिया जाए तो इंद्रियां भी इंद्रियों में जानने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये थी एक छोटी सी विषय, फिर अगले शनिवार को देखिए क्या मिलता है।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राव जी आने के लिए, और भीगा मौसम है, ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलते हैं। नमस्कार जी।
3: नमस्कार।
0: तो मित्रों, ये थे राव जी, और हमारा प्रोग्राम में हर शनिवार को पुराने गीतों के साथ आते हैं, और आज थोड़ा देर से लेकर आया हूं मैं, तो चलो दो विज्ञापन सुनते हैं और उसके बाद हम गीतों को बदलेंगे और हिट्स ऑफ 90s के तरफ हम आपको लेकर चलेंगे। तो चलें, खबर के साथ आगे बढ़े हम।
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना। ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। वी प्राइड आवरसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विस।
0: मित्रों, हम याद कर रहे हैं उन लोगों को जिनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है। मेरे तरफ से, रेडियो ब्रिजवानी की तरफ से, हमारे श्रोतागण की तरफ से, आपके जीवन में ऐसे खुशियां हमेशा आती रहें। हर दिन समझ लो आपका जन्मदिन है, हर दिन समझ लो शादी की सालगिरह है, तब रिश्ता घनिष्ठ रहेगा, आगे बढ़ोगे। तो दो आशीर्वाद है मेरे तरफ से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी आप फंक्शंस वगैरह अरेंज किए होंगे तो इनडोर्स भी होगा, क्योंकि बारिश हो रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए प्यारा सा गाना।

0: जी मित्रों, कुमार सानू और कायाग्नि जी द्वारा ये गीत आप सुन रहे थे, और आगे बढ़ते हैं, चलें विज्ञापन के साथ।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: मित्रों, मैं परमानंद बोल रहा हूँ, और इस समय 19 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 बजे रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल एक गीत मैं बजाने जा रहा हूँ जो मेरे हाथ लगा अचानक से, और कब हुआ, जब मैं किशोर कुमार जी के बारे में कुछ पढ़ रहा था, तो कहते हैं एक अमीर गरीब फिल्म में बहुत सारे गाने, लेकिन दो गीत किशोर दा अदा किए हैं, और एक गीत जिसमें मनाडे साहब को अर्धशास्त्रीय संगीत चून पर गाना था, तो कह रहे थे कि मनाडे गाएंगे, लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं भाई, हम किशोर को भी चाहते हैं। तो किशोर कुमार ने कहा कि भाई क्यों ना मनाडे साहब से गवा लेते हैं। तो जब रिकॉर्डिंग इन्होंने फिर राजी नहीं हुए एक दूसरे को, बोले नहीं ये गाएगा वो गाएगा, तो बोलते चलो जी साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक तरफ मनाडे साहब अपने धुन में गा रहे हैं, दूसरे तरफ किशोर कुमार जी गा रहे हैं। जब रिकॉर्डिंग समाप्त हुई तब मनाडे आकर किशोर से कहता कि जो गीत जिस तरह से आपने गाए हैं ये पसंद आए, यही चलना चाहिए। लेकिन दोनों ने किया है, तो प्रेमनाथ जी जो हैं वो मनाडे की आवाज़ में हैं, और देवानंद साहब जो हैं किशोरदा की आवाज़ में हैं। तो चलें सुने, ये पार्टी का गाना है, शाम को आप रचें पार्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बजाकर आपको याद दिला दें शाम की पार्टी का। 2, 3, 4।

0: जय मित्रों, कैसा लगा? खूबसूरत सा गीत था और अचानक से गाना हाथ लग गया तो मैंने सोचा बजा देता हूँ आपके लिए।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: और इस समय 13 मिनट रह गए हैं 8 बजे में। आगे बढ़ते हुए चलें, अलका याग्निक जी और साथ दे रहे हैं अभिजीत साहब, हंसाते हो रुलाते हो।

0: ये मित्रों हंसाते हो रुलाते हो क्या बात है। लिरिक्स बड़े अच्छे थे और ऐसे गीत जल्दी नहीं इनके निर्माण होते हैं।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
0: अब मित्रों आगे बढ़ते हुए चलें। बहुत प्यारा सा गीत है और आपको सुनाना चाहूंगा मैं कि मुझसे शादी करोगी। कौन बोल रहा है? अलका जी साथ दे रहे हैं उदित साहब। जस्ट पिक्चर दैट यू आर इन दैट सीन।

0: जी मित्रों, बस 8 बजने में 2 मिनट रह गए हैं, तो एक खबर सुन लेते हैं, उसके बाद हम रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तो चलें सुने पहले खबर।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: तो मित्रों, ये था खबर, और खबर के साथ साथ बस 8 बजने वाले हैं और अभी से लेकर ठीक 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया आपके लिए हम पेश करेंगे। आप सबका मैं परमानंद हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। आपको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम, केम छो भेंट कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका सप्ताह बहुत अच्छी तरह से बीता होगा। शनिवार आ चुका है, फिर वीकेंड आ गई है, बारिश हो रहा है हमारे साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में। ऐसे में बाहर तो बहुत कुछ बाग बगीचे में, गार्डन में काम तो नहीं कर पाओगे, तो शॉपिंग वगैरह तो कर सकोगे, और कपड़े थोड़ा गर्म पहन लेना है। और जब निकलेंगे शॉपिंग करने के लिए तो रानी क्रिएशंस का नाम याद रखें कि कहाँ वो उपस्थित हैं और कहाँ क्या मिलता है, ये सब बातें। चलो कोशिश कर दें खबर बजाने का। अच्छा, ए यहाँ पर नहीं बज रहा, तो हम दूसरे फॉर्मेट पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ बज जाए। जी हाँ, यहाँ कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 Balclava Street, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Oh, mitro, Rani Creations mein up to 50% off sale chal raha hai, jahan par aap aakar kapdo ko dekh sakte hain, kharid sakte hain. Bahut sare naye stock ke kapde aaye hain, bachcho ke bhi kapde aa chuke hain, aur bahut khoobsurat सलवार कमीज वगैरह, लहंगा, और साथ में सारीज आए हुए हैं। और याद रहे, कई सारीज हैं जिनमें रेडीमेड ब्लाउज बने हुए हैं, तो आपको यहाँ वहाँ जाकर टेलर को नहीं ढूंढना पड़ेगा। आजकल टेलर का जो सिलाई करते हैं ना, काफ़ी महंगा है। तो जब कभी आप साड़ी खरीदें तो याद रखें, अगर ब्लाउज बनी हुई है तो भागदौड़ से बचोगे, फ्यूल के भी दाम बहुत ऊपर है। तो ऐसे में बस रानी क्रिएशंस को याद करें, मनपसंद के कपड़े, चाहे औरतों के कपड़े हो, बच्चों के हो, मर्दों के कपड़े हो, ये सब यहाँ मिलते हैं। इनके साथ साथ बहुत सारे एक्सेसरीज हैं जो आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। पार्किंग का कोई चिंता नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। बस समय याद रखें, 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक शॉपिंग आवर्स है, और रविवार को 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की आवर्स है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज पहला जो प्यारा गीत है, 3 कलाकार इसे अदा कर रहे हैं, अलका जी हैं, साथ दे रहे हैं कुमार सानू साहब, उदित जी, दिल है तुम्हारा का शीर्षक गाना।

0: जी मित्रों, दिल ही तुम्हारा टाइटल सॉन्ग था, दिल ही तुम्हारा फिल्म का, और ये गाना बहुत ही लोकप्रिय है और कई लोग इसे सुनते हैं और पसंद करते हैं और फिर सुनना चाहते हैं। तो ये था गाना।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Oh, Mitro, is bar Babul Supriyo aur Alka ji aa rahi hain. Kya yahi pyar hai film ka jo 2002 mein release hua tha? Meri tarah tum bhi kabhi pyar karke dekho.

0: जी मित्रों, प्यार करके देखो ना, प्यारा सा गीत था जो आप सुन रहे थे। और हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समय है, एक और गीत बजा देते हैं और इसके बाद समाप्ति पर हम पहुंचेंगे। आप रेडियो ब्रिजबानी, आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं और यह है रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। चले आगे, क्या बात है, मैंने प्यार किया फिल्म का गाना है, साजन तेरे प्यार की लड़ाई में।
1: चले

0: जय मित्रों, टूट गई चूड़ियां कलाई में, इसी के साथ ही रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया जो आप सुन रहे थे समाप्ति पर पहुंचा। अगले शनिवार को एक और सेगमेंट लेकर ठीक 8 बजे से आपके सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए रिमेम्बर, फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स इट्स रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट उलंगेवा। इसी के साथ ही आगे चाहें नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जय मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम। अब हम चलते हैं विज्ञापन के तरफ, और अब जो विज्ञापन बजाने जा रहा हूँ वो ए है आपके लिए।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगेबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जय मित्रों, सही बात है, और हम आगे बढ़ते हैं। चलें, एक बहुत प्यारा सा गीत है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगे। सुनते हैं इस गीत को।

ज्योति नूरन अदा कर रहे थे इस गीत को। मित्रों अच्छा लगा और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा। बड़ा अनोखा आवाज था ये, और क्या बोलूँ आपसे, कभी कभी ऐसे मुश्किल से आवाज ऐसे आ जाते हैं और जी चाहता कि आपको सुना दें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत सा गीत है, बलमा ऐसे ना निकले, बलमा वैसे ना निकले, क्या बात है, ये सुनाते हैं आपको। बस करीब आ रहा समय का, इसके बाद निबिया जी 8:30 बजे आ जाएंगी, तो चलें इस गीत के साथ।

0: जी मित्रों, बलमा ऐसे ना निकले, बलमा वैसे ना निकले, आप सुन रहे थे कुछ ऐसे गाने जो बहुत अच्छे लगते हैं और जी चाहता है कि उनको सुना दें। चलें, एक और गीत ऐसा है आपको सुनवाते हैं और उसके बाद निविया जी आ जाएंगी टॉप टेन को लेकर, उनका साथ दीजिएगा और फिर कल का प्रोग्राम तो आप जानते हैं कि धार्मिक प्रोग्राम से प्रोग्राम का शुरुआत होगा और उसके बाद नंदकिशोरदास प्रभु जी 8 बजे आ जाएंगे वेदवाणी को लेकर, और फिर जतीश जी आएंगे 9 बजे, और फिर रोहित सिंह साहब 12:30 बजे और सुशीला जी उसके बाद। चलो सुनते हैं इस गीत को।
1: तुम जुपिटर जिधर भी हो ना, निकल के पहुंच जाइयो। नहीं आए ना तो जूते पड़ेंगे।

जी मित्रों, इसी के साथ ही आज का जो संगीत सरगम प्रोग्राम था समाप्ति पर पहुंचा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो गीत आप सुने आपको पसंद आया होगा। अगले शनिवार को एक बार फिर आपके सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा और फिर लेकर आएंगे एक और सेगमेंट। मेरे तरफ से मेरी दुआ आशीर्वाद आपके साथ है और अपना समय को अच्छी तरह से व्यतीत करना, खुश रहना पूरे परिवार के साथ, एंजॉय द मोमेंट। गॉड ब्लेस यू। निवेदी का इंतजार कीजिए।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और कैसे हो आप सब। जी हाँ, वीकेंड इज हियर एंड वी आर हैप्पी। आई मीन वीकेंड आता है तो खुशी आती है साथ में, अपने साथ मजेदार सी चीजें लेकर आता है वीकेंड। बहुत सारी प्लानिंग जो हमने की होती है पूरे के पूरे हफ्ते, वो हमें पूरी करनी होती है। अच्छा खाना होता है, अच्छा पीना होता है, अच्छे से रेस्ट करनी होती है, अच्छी चीजों में पार्टिसिपेट करना होता है, कोई ऐसी गेम खेलनी होती है जो हम नहीं खेल पाते, जिसका टाइम हम नहीं निकाल पाते हैं, अपने दोस्तों से मिल पाते हैं, गेट टुगेदर कर पाते हैं। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली वीकेंड हमें करने में हेल्प करता है। सो वीकेंड्स आर रियली रियली रियली अमेजिंग। हैप्पी वीकेंड टू एवरीवन। जी हाँ, सो वीकेंड तो आ गया है। आई होप आपकी जो मस्ती की तैयारी है वो भी पूरी की पूरी हो गई हो, क्योंकि अभी भी नहीं हुई तो कब होगी। जी हाँ, कब होगी। और अगर नहीं हुई तो थोड़ी बहुत हेल्प हम कर देंगे, हम आपको बता देंगे क्या क्या आप कर सकते हैं इस वीकेंड। तो आइए बिना देर किए हुए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इस प्रोग्राम की, जबरदस्त से प्रोग्राम की, जो कि अगेन बहुत ही खास है क्योंकि ये सिर्फ वीकेंड पे आता है। और इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं उन 10 चुनिंदा गानों के साथ जो टॉप पे है, हॉट है, ट्रेंडिंग है, हर किसी की जुबान पे है और सबको बेहद ही ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। सो जल्दी से आ जाइए इस सफर में, आ जाइए, सवार हो जाइए हमारे साथ। और जो गाना है जो सबसे पहला मैं प्ले करने वाली हूँ इस प्रोग्राम में, यानी कि 10वें नंबर का गाना, वो है तुम पे ही प्यार आ गया। सोनू निगम की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना, गिनी वेड्स सनी 2। जी हाँ, गिनी वेड्स सनी 2 ये एक मूवी है जो कि थिएटर्स में जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी उतर गई। लिटरली बहुत ज्यादा बुरे हाल से फ्लॉप हुई है, लेकिन इसके गाने बहुत ही खूबसूरत है। और उसी में से एक गाना ये है जो कि 10वें नंबर पर बना हुआ है हमारे साथ इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट में।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, सोनू निगम ने फिर से अच्छे से प्लेबैक सिंगिंग में जो है वो एंट्री मार ली है। ऑल्दो वो कभी भी गए नहीं थे, एग्जिट उन्होंने कभी भी नहीं किया था, बट फिर भी अब वो ज्यादा से ज्यादा गाने जो है वो कर रहे हैं फिर से, एंड वी आर लविंग इट। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जनरेशन लकी है बिकॉज वी हैव श्रेया घोषाल एंड सोनू निगम विद अस। जी हाँ, सो अगेन यहाँ पर ये मूवी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 25 करोड़ के बजट में बनी थी लेकिन 2 करोड़ भी पूरा नहीं कमा पाई। जी हाँ, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। ऑल्दो इसमें जो एक्ट्रेस है वो 12th फेल की वाली एक्ट्रेस आपको देखने को मिली, और लैला मजनू में जो एक्टर है, जो लीड है, वो आपको इसमें देखने को मिले। मूवी जो है उसको अच्छे से प्रमोट किया गया था, लेकिन फिर भी आजकल लोगों को बहुत ही खतरनाक कॉन्टेंट पसंद आने लग गया है, और खासकर और ऐसी जो हॉरर कॉमेडीज की आदत जो लग गई है लोगों को, उसके बाद लोग कुछ भी नॉर्मल देखना पसंद कर ही नहीं रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का नैरेटिव जो है वो चेंज हो चुका है, एंड हाउ। जी हाँ, सो ये है गिन्नी वेड्स यू नो सनी 2, बट ऑफकोर्स ये हिट नहीं हो पाई। सो इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, 9वें नंबर के गाने की तरफ चलते हैं, और ये है मूवी जो कि लगी हुई है थिएटर्स में, मेरी दादी की शादी, आई मीन नॉट मेरी दादी की शादी बट दादी की शादी। जी हाँ, नीतू कपूर है इसमें, साथ में है कपिल शर्मा, और कपिल शर्मा के साथ भी वही हो रहा है, वो शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी उनको पता चलता है कि उनकी दादी भी शादी करने की तैयारी में। फिर क्या होता है? वेल, फिर जो होता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद थिएटर्स में जाकर इस मूवी को देखोगे। इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स अ कॉमेडी मूवी, यू कैन लिटरली गो फॉर इट एंड यू कैन एंजॉय इट। जी हाँ, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या हम अपनी फैमिली के साथ जाएं या नहीं जाएं। ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर इट विद योर फैमिली। इसी के साथ ये वाला गाना 9वें नंबर का आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, एक चीज तो पक्की है, हम कपिल शर्मा को इतने फनी अवतार में देखते रहे हैं कि जब भी वो मूवीज में आते हैं ना, और रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं और एकदम रोमांटिक एक्टर की तरह, रोमांटिक लीड की तरह वो रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, हमें हंसी आ जाती है क्योंकि उनके साथ कॉमेडी एसोसिएटेड है। मतलब कपिल शर्मा एंड कॉमेडी, वो अलग अलग जा ही नहीं सकते, वो दे गो बोथ हैंड इन हैंड। सो अगेन, जब भी जैसे मैंने कहा कि हम कपिल शर्मा को देखते हैं किसी भी कैरेक्टर में जहां पे वो रोमांटिक कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां भी हमें हंसी आ जाती है। जी हाँ, सो आप मुझे बताइए कि दादी की शादी तो एक हफ्ते से रिलीज हो चुकी है, पहले ही हो चुकी थी पिछले हफ्ते ही, क्या आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है? नहीं देखा है तब भी बताइएगा, देखा है तब भी बताइएगा, क्योंकि मैं फिर आपको ये बताने वाली हूं कि आप क्या क्या और देख सकते हो। चलिए इसी के साथ यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अब आपको सुनाते हैं 8वें नंबर का गाना, जो कि कॉकटेल 2 का गाना है। जी हाँ, माइंड यू गाइस, कॉकटेल 2, जो कि शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सैनन के साथ होने वाली है। कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है हमें नहीं पता, एंड आई एम नॉट गोना टेल यू। एक्चुअली पिछले हफ्ते मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बताऊंगी, इस बार मैं सरप्राइज रखूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं आप खुद ही जानो। कॉकटेल 2 खतरनाक और बहुत ही हिट मूवी, कॉकटेल का सेकंड पार्ट है, सीक्वल है, और ऑफ कोर्स ये सीक्वल जो है वो बहुत टाइम बाद आ रहा है, ऑफ कोर्स विद द डिफरेंट कास्ट। सो या इसी के साथ, इसी का गाना जो है वो है 8th नंबर पर, और वो है जब तलक।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. और अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं फिल्मों की, गानों की, अब जरा हम आपको बताना शुरू कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी मूवीज हैं. खासकर इस हफ्ते तो देखने के लिए बहुत सारी मूवीज हैं जिनके बारे में मुझे आपको बताना है. जैसे कि दादी की शादी, वो तो है और वो पिछले हफ्ते से लगी हुई है, मतलब एक हफ्ता हो गया है उसे लगे हुए. लेकिन एक और मूवी है जिसे आप देख सकते है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पति पत्नी और वो दो. जी हाँ, पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और वो दो. पति पत्नी और वो आपने देखी है, पति और पति पत्नी और वो टू भी आपने देखी है, लेकिन अब ये तीसरा वाला पार्ट है जिसमें आयुष्मान खुराना है, उनकी पत्नी का रोल प्ले कर रही है बामिका गाबी, और दो जो और नायिकाएं हैं वो है सारा अली खान एंड राकुल प्रीत. वो क्या कर रही है वो तो आपको थिएटर जाकर ही पता चलेगा. आई एम नॉट गोना टेल यू, बट हाँ मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि ये बवाल वही है कि पति को पत्नी के अलावा भी यहाँ वहाँ बहुत सारी जो है वो यू नो अप्सराएं दिख रही है और वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. और यही है कहानी जो कि बिल्कुल खराब कर देती है कहानी. जी हाँ, यहाँ पर ये वाली मूवी जो है वो लगी हुई है. इसी के साथ एक और मूवी जो कि आप देख सकते हैं वो है शिवाजी, और वो राजा शिवाजी. और राजा शिवाजी जो है वो अगेन एक हिस्टोरिकल मूवी है जिसमें रितेश देशमुख, उनकी वाइफ, संजय दत्त, फरदीन खान और बहुत सारे और भी यू नो स्टारकास्ट आपको उसमें नजर आएगी. बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स उसमें आपको नजर आएंगे. छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ पर ये मूवी बनी है. मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े किंग में उनका नाम आता है और वही है सबसे बड़े किंग बेसिकली. सो क्या हिस्ट्री रही उनकी, कैसे रहा और क्या उनकी लाइफ की कहानी रही, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी. लेकिन अगेन मैं इतना ही कहूंगी कि रितेश देशमुख एज अ छत्रपति शिवाजी महाराज मुझे थोड़े से फीके लग रहे हैं. बाकी ये मूवी से मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपने मूवी देख ली है तो जरूर हमें बताइएगा, और नहीं देखी है तो गो फॉर इट, जाइए. और इसी के साथ आप कृष्णा अवतारम भी देख सकते हैं. जी हाँ, कृष्णा अवतारम पार्ट 1 जो कि बहुत ही खास है. और ये है पर्सपेक्टिव किसका, ये है पर्सपेक्टिव सत्यभामा जो कि कृष्ण भगवान की दूसरी रानी थी, यानी कि अष्ट महारानियों में से, अष्ट पटरानियों में से सेकंड महारानी. और वो एक वॉरियर क्वीन थी, वो नॉर्मल नहीं थी. नॉर्मल से मेरा मतलब है कि वो वॉरियर थी और वो उन्हें प्यार करना भी आता था, उन्हें रूठना भी आता था, उन्हें शिकायत करना भी आता था. वो अच्छे का साथ देती थी और नरकासुर तक का वध उन्होंने किया था. सो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है और अगर आपको कृष्ण भगवान की उन लीलाओं को देखना है तो आप कृष्णावतारम भी देख सकते हैं. सो इतनी सारी मूवीज, और अब मैं जाऊंगी सीधा हॉलीवुड मूवीज की तरफ क्योंकि बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी लगी हुई हैं. सो ये सारी की सारी मूवीज आप देख सकते हैं और मुझे बताइए आपकी कौन सी चॉइस होगी. इसी के साथ यहां पर अगला गाना जो कि है वाव, ये है जवानी तो इश्क होना है और ये उसी का गाना है. क्या है माजरा आपको बाद में बताते हैं, बल आपको गाना

जी दोस्तों, इस गाने के बारे में मैं क्या कहूँ। इस गाने को सबसे ज्यादा पॉपुलर तो जाह्नवी कपूर ने कर दिया भाई। जाह्नवी कपूर किसी इवेंट के लिए तैयार हो रही थी और उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट क्रिएट अ रील। जी हाँ, जब वो रेडी हो रही थी तो उन्होंने सबसे पहले इस रील को बनाया और उसके बाद ये गाना। जैसे इस गाने की जो सक्सेस है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है एंड एवरीवन इज क्रिएटिंग रील्स ऑन दिस सॉन्ग। सो या ये गाना जो है वो पॉपुलर हो गया है, मजेदार है। और ये है, जैसे मैंने आपको बताया, मूवी है जवानी तो इश्क होना है। जी हाँ, गाने का नाम है वाव और इसमें वरुण धवन है, मृणाल ठाकुर है, पूजा हेगड़े हैं। जी हाँ, ये है मूवी, लेकिन अभी नहीं आई है, ये आने वाली है जल्द ही। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और मस्कारा आपको सुनाते, क्योंकि ये गाना भी खास है। अभी कल ही की बात है, आलिया भट्ट ने इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से प्रमोट किया, जहां वो कांस में रेडी हो रही है अपनी अपेयरेंस के लिए और वहां पर उन्होंने लिखा हुआ है दिस वन इज फॉर अल्फा, मतलब उनकी जो मूवी आ रही है अल्फा, जिसमें वो शर्वरी बाग के साथ नजर आएंगी। और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है दिस एंड दिस वन इज फॉर जिगरा। जी हाँ, जिगरा मतलब जो इसमें जो एक्टर है वेदांग रैना, जिगरा मूवी आलिया भट्ट की उन्हीं के साथ आई थी, जहां पर वो उन्होंने उनकी बहन का कैरेक्टर प्ले किया था। बहुत ही खतरनाक मूवी थी, लोगों को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई पर काफी लोगों को पसंद भी आई। सो या इन दोनों को शाउट आउट देते हुए, क्योंकि दोनों के साथ, एक के साथ वो मूवी कर चुकी है, दूसरे के साथ वो मूवी कर रही है, उनको शाउट आउट देते हुए बड़े ही अच्छे से वो रेडी हो रही थी, वो मस्कारा लगा रही थी और गाने का नाम भी मस्कारा है। जी हाँ, मस्कारा गाने का नाम है, वो खुद भी मस्कारा लगा रही थी और बड़े ही अच्छे से इसको गुनगुनाती हुई वो नजर आई और बहुत ही अच्छे से उन्होंने शाउट आउट किया अपनी कंटेम्प्रेरीज को।

0: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
3: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि बॉलीवुड मूवीज में आप क्या क्या देख सकते हो, मतलब हिंदी मूवीज में आप क्या क्या देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हॉलीवुड मूवीज, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में भी बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो द डेविल वेयर्स प्राडा 2 जो अगेन बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। अगर हम क्रिटिकल क्लेम के बारे में बात करें तो उतना ज्यादा क्रिटिक्स की तरफ से प्यार इसे मिलता हुआ नहीं दिखा है। लोगों को भी लग रहा था कि काफी डिसअपॉइंटिंग थी एज कम्पेयर टू जो पहली वाली मूवी है, उसके इतना फैंडम है, इतना बड़ा फैंडम है। इट्स अ क्लासिक हिट, इट्स अ क्लासिक फेवरेट, उसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कमाई के बारे में बात करें तो कमाई तो ये अपनी पहली वाली पार्ट से बहुत ज्यादा कर चुकी है। 100 करोड़ में बनी है लेकिन 500 करोड़ कमा चुकी है। ये है द डेविल्स वेयर्स प्राडा 2। अब बात करते हैं एक और मूवी की जो कि है मॉर्टल कॉम्बैट, जी हाँ 2। अगेन ये वॉर्नर ब्रदर्स के प्रोडक्शन हाउस से बनी है मूवी, और इसके बारे में मैं क्या कहूं। ये मूवी जो है ये अगेन फैंटेसी है, ये ड्रामा भी है और ये साथ में एक्शन भी है। सो एंड एक्शन, फैंटेसी, ड्रामा, ये सब आपको मिलने वाला है। और इस सीरीज के तो लोग वैसे भी दीवाने, इसका अलग फैंडम है। सो अगर आप भी मॉर्टल कॉम्बैट सीरीज के फैन हो तो गो फॉर इट। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा एक और मूवी की तरफ जो कि हॉरर है। जी हाँ, वो हॉरर मूवी है और हॉरर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मैंने आपको बताया था कल भी कि कैसे उसको देखते देखते मेरे दिमाग में भी 3 बार ख्याल आया था कि ओके निवेश शर्मा भाग जाते हैं, नहीं देखते हैं इसको, क्योंकि इतना डर लगा और इतनी क्रीपी लगी वो मूवी कि मतलब आपको सच में ऐसा मन करेगा। बट जिन लोगों को ये जॉनर पसंद है उनको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगेन मुझे भी ये मूवी काफी पसंद आई है, आई मीन अगर हम वो क्रीपी वाला पार्ट छोड़ दें, बट बहुत सारी चीरफाड़ और वो सब ब्लड आपको दिखने वाला है, लेकिन जो हॉरर वाला पार्ट है वो भी बहुत स्ट्रांग है। देन गो फॉर इट इफ यू लाइक हॉरर जॉनर। जी हाँ, और अगर आप हॉरर और कॉमेडी दोनों देखना चाहते हैं तो भूत बंगला देख लीजिए, क्योंकि भूत बंगला भी लगी हुई है अभी थिएटर्स में। सो ये सारी की सारी मूवीज जो है वो थिएटर्स में लगी हुई है, गो फॉर इट। और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ ओटीटी पे आपके लिए क्या है एक ऐसी बवंडर मूवी जिसने लिटरली बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर बवंडर ला दिया था। लेकिन पहले हम आपको मूवी का गाना सुनाएंगे, क्योंकि हम बात बाद में करेंगे, पहले हम आपको गाना सुनाएंगे उसी का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है इस मूवी का। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट धुरंधर द रिवेंज।

जी हाँ दोस्तों, इस गाने के बारे में मैं क्या कहूँ। ये गाना जुबिन नौटियाल ने गाया है और इस गाने को गाने के बाद उन्होंने शादी भी कर ली। जी हाँ, गाने का नाम है आखिरी इश्क। और क्यों ये गाना अपने टाइटल से ही बहुत ज्यादा खास है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। आई नो आई वॉज गोना टॉक अबाउट धुरंधर एंड आई विल टॉक अबाउट धुरंधर द रिवेंज, बट पहले मैं ये आखिरी इश्क के बारे में थोड़ी बात कर लूँ। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी का बनना चाहते हो तो पहला इश्क या पहली मोहब्बत मत बनो, उनकी आखिरी इश्क या आखिरी मोहब्बत बनो। उसका मतलब क्या है कि पहले इश्क के बाद और पहली मोहब्बत के बाद तो फिर भी चांसेस होते हैं कि उस मोहब्बत के खत्म होने के साथ कोई और मोहब्बत, कोई और इंसान उनकी जिंदगी में आ सकता है। जी हाँ, मतलब पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत हो ये पक्की बात नहीं है, लेकिन आखिरी मोहब्बत तो वही होगी जब उसको मिलने के बाद, उस पर्टिकुलर पार्टनर को मिलने के बाद, उस इंसान को मिलने के बाद किसी और की जरूरत ही नहीं होगी। जी हाँ, किसी और को देख के लगेगा ही नहीं कि हाँ अब तो हमें प्यार चाहिए भी या नहीं। जी हाँ, सो आखिरी इश्क बनना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पहला बनो या ना बनो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आखिरी बनोगे तो कामयाब रहोगे, किसी ने बहुत ही खूब कहा है। जी हाँ, यहाँ पर धुरंधर द रिवेंज के बारे में बात कर लेते हैं। धुरंधर द रिवेंज जो है वो फाइनली आ गई है नेटफ्लिक्स पर, यानी कि धुरंधर द रिवेंज आ गई है नेटफ्लिक्स पर। और यहाँ पर उन्होंने इसके आगे कुछ और भी बोला हुआ है। इन्होंने बोला है, नेटफ्लिक्स ने कहा है कि उनके पास वो वाला वर्जन है जो कि अनकट है, जो कि थिएटर्स में भी नहीं देखा गया है। सो वो वाला वर्जन नेटफ्लिक्स पे दिखने वाला है और दिख रहा है, इनफैक्ट पिछले कल ही आ गई थी। और यहाँ पर आप लोगों को अगर ये मूवी देखनी है देन गो फॉर इट। जैसे मैंने कहा कि जो वर्जन आपको थिएटर्स में भी नहीं मिला था वो वर्जन आपको मिलने वाला है नेटफ्लिक्स की तरफ से। और जितनी भी हमारी कंट्री के अलावा और कंट्रीज हैं, इंडिया के अलावा बाकी सब जगह जो है इसी वक्त जो है आप इसे देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। लेकिन अगर इंडिया में कोई देखना चाहता है तो उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस के लिए अभी ये मूवी ओटीटी पर रिलीज नहीं हुई है, बिकॉज ये मूवी इंडियन ऑडियंस के लिए जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। बाकी की ओवरसीज या जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए ये नेटफ्लिक्स पर आएगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स की रीच बहुत ज्यादा है। जी हाँ, सो या धुरंधर द रिवेंज आ गई है। अगर आपने धुरंधर द रिवेंज के लिए पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले धुरंधर देखिए, वो भी नेटफ्लिक्स पर है, और फिर मुझे बताइए कैसा लगा आपको। ऑल्दो इट्स अ A-rated मूवी सो यू कांट वॉच इट विद योर किड्स और योर फैमिली, बट हाँ उसके अलावा आप इसे देख सकते हैं एंड इट इज अ मूवी लाइक वेरी गुड मूवी। जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, जो कि 14 नंबर का गाना हमने वहीं लगाया दिल। मैंने आपको कहा ना पति पत्नी और वो दो लगी हुई है थिएटर्स में, तो आइए फिर इसी का गाना सुन लेते हैं। ऑल्दो ये गाना जो है वो अभी क्रिश और किशोर मंडल ने थोड़े दिन पहले गाया था और उसके बाद अभी से इस मूवी में भी ले लिया गया है। अगेन सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों मुझे ना आपसे एक बात करनी है, एक बात जो मुझे लगता है कि हम सबके साथ जरूर होती होगी, लेकिन अगर आपके साथ नहीं होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। सो कभी आपने देखा है कि आपकी मम्मी ऐसे नॉर्मल टाइम पे ना बहुत ज्यादा खतरनाक मूड में रह सकती है, लेकिन जब भी उनकी तरफ से यानी कि उनके मायके से किसी का कॉल आता है तो वो एकदम मजेदार मूड में आ जाती है, एकदम चटपटी बातें शुरू हो जाती है। सो आप मुझे बताइए, क्या मेरी तरह आपको भी मजा आता है वो चटपटी बातें सुनने के लिए जब आपके किसी मम्मी की या मामा वाली साइड से किसी का कॉल आता है, मम्मी के मायके वाली साइड से किसी का कॉल आता है और वो बड़े ही अच्छे से पता नहीं कहां कहां की बातें करती है। हमको कैरेक्टर्स भी नहीं पता होते एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है, लेकिन जो बातें हो रही होती है ना वो बहुत ही चटपटी होती है, मजेदार होती है। सो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज गलत है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी बहुत बातें सुनने में कोई बुराई नहीं है। मतलब आप थोड़ी बहुत गॉसिप अगर सुन रहे हो तो उससे अगर आपका खून बढ़ रहा है तो उसमें क्या ही बुराई है, राइट? आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है या आपको इन जनरल गॉसिप सुनने में मजा आता है या नहीं आता है, जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मम्मी वाली साइड से या मम्मी जब किसी से गॉसिप कर रही होती है तब सबसे ज्यादा मजा आता है, तब मेरा मन करता है एकदम अपने शेड्स पहन के बैठ जाऊं और फिर उनको ध्यान से देखूं और ध्यान से सुनूं। आप लोग बोलोगे शेड्स क्यों, आई डोंट नो, आई फील लाइक डूइंग इट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो की है तीसरे नंबर का गाना और ये है भूत बंगला का ही गाना तू ही दिसदा, अक्षय कुमार और वामिका गाबी की मूवी। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से इंजेक्शन से डर किस किस को लगता है? जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि निव्या इंजेक्शन कहाँ से आ गया, मतलब सुई से डर किस किस को लगता है? क्योंकि अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर, जहां पर एक डॉग, जी हाँ एक डॉग, जिसको ले जाया जाता है वेट के पास और उसे पता है कि अब उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट बाजी तो होने वाली है। तो जब वेट इंजेक्शन लगाने लगता है तो वो बड़े ही स्टाइल से भागने की कोशिश नहीं करता है। जी हाँ, बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं करता है, जो कि नॉर्मली डॉग्स, कैट्स और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो करते हैं। वो बड़े ही अच्छे से जो वेट होता है उसके कंधे पे अपना सर रखता है और ऐसे करके बैठ जाता है कि ओके, जो भी करना है प्लीज धीरे करना, आराम से करना। अगर तुमने सुई लगानी भी है, अगर तुमको इंजेक्शन लगाना भी है तो धीरे लगाना। एंड दैट वीडियो इज गोइंग वायरल। मैंने कहा हाँ, बचपन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया। आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को भी इंजेक्शन से डर लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को इंजेक्शन से डर लगते हुए देखा है। बट वो डॉग की वीडियो बहुत ही ज्यादा क्यूटली वायरल हो रही है। आप मुझे बताइए आपने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है। इसी के साथ यहाँ पर अब दूसरे नंबर का गाना प्ले करने का वक्त आ गया है, और वो गाना है ख्वाब देखूं, और ये है मूवी एक दिन का गाना, जो कि थिएटर से उतर चुकी है, OTT पर आने वाली है, और ये है उसी का गाना जो कि साई पल्लवी और जुनैद खान की मूवी है, आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस से बनी हुई।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ, आपसे विदा लेने का वक्त अब हो गया है और अब हम जा रहे हैं, वापस आएंगे मंडे को इवनिंग वाइब में। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल ऑफ कोर्स आपको मजे करने हैं और मजे करते रहना है। जी हाँ, आपको अपना फेवरेट खाना खाना है, अपना फेवरेट चीजें आपको पीनी है। पीने से मेरा मतलब है कि अच्छी हेल्दी चीजें पीनी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला है। जी हाँ, और इसी के साथ आपको अपने फन का इंतजाम करना है, कुछ अच्छा सा देखना है, वट एवर, चाहे ओटीटी चाहे थिएटर्स, वो आपकी चॉइस है, बट कुछ अच्छा सा करना है। और अगर आपका गाना गाने का मन है तो गाना भी आप गा सकते हो। लिटरली अभी गली की बात है, मैंने एक मीम देखा और जो कि बहुत अच्छे से एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज उसने उस मीम में बताई हुई थी कि यू नो आई हेट वेन पीपल करेक्ट मी वेन आई सिंग। जी हाँ, वट इफ आई एम डूइंग रिमिक्स एंड आई वॉज लाइक या दैट्स ट्रू। सो जिसकी भी इंसान को गाना गाना बहुत पसंद है लेकिन उनको रोक दिया जाता है, जस्ट लाइक मुझे रोका जाता है कि निव्या शर्मा तुम मत गाना। गाना गाने में कोई बुराई नहीं है, मजे से गाइए। और अगर कोई आपको रोकता है तो बोल दीजिए कि ओके ठीक है, लिरिक्स गलत नहीं गा रहा हूं, मैं रीमिक्स कर रहा हूं, रीमिक्स, और सुरताल भी गलत नहीं है, ये मेरा तरीका है। जी इसी के साथ बाय, सी यू टाटा, मिलते हैं आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। ये लास्ट सॉन्ग, नंबर 1 सॉन्ग, आरी आरी आरी फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स धुरंधर द रिवेंज।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यू बॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.